सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। आज शुक्रवार है, सख संबत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026 सुबह के 5:56 और 25 सेकंड में अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: बड़ी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

कभी शांत होकर जीवन को देखो। सूरज हर सुबह समय पर उगता है, चांद अपनी कला बदलता रहता है, समुद्र की लहरें उठती गिरती रहती हैं, और एक छोटा सा बीज धरती को चीरकर वृक्ष बन जाता है। किसने सिखाया बीज को उसे वृक्ष बनना? किसने कहा नदी से कि उसे सागर तक पहुंचना है? कौन चला रहा है इस पूरे अस्तित्व को? वही अदृश्य शक्ति सब में वहाँ काम कर रही है, और आश्चर्य की बात है कि वही शक्ति हमारे और आपके भीतर भी है, लेकिन मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है, इसलिए वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। अहंकार दीवार बन जाता है और उस दीवार के कारण भीतर का प्रकाश नहीं दिखाई देता। ज्ञान ज्योति। अपेक्षा कार्यक्रम वंदना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है और वही सत्ता इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और वही सत्ता बाहर है और वही हमारे भीतर है। आइए उस भीतर की सत्ता को नमन करते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। अखंड ब्रह्मांड के नायक महादेव को कोटि कोटि वंदन।

वंदना कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आइए वंदना करते हैं पुनः अखिल ब्राह्मण नायिका जगत जननी जगदम्बिका की।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। शेष कार्यक्रमों के रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात का अंक। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुनेंगे। पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दस बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 10:05 पर लघु वार्ता होगी। 10:15 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिले कवाली। 10:45 पर कार्यक्रम होगा लोक रंग और 11 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर 12:00 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

3 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार लेके जाएंगे और 5:05 पर आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। यूमंच कार्यक्रम होगा 5:30 पर। 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले होंगे 7:45 पर, और 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। समाचार संध्या का अंक आप सुनेंगे 8:45 पर, न्यूज़ @9 रात्रि 9 बजे, 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, 10:30 पर कार्यक्रम होगा चांदनी रातें, और 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:55 हुए, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार पहले संस्कृत में और 7 बजे हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिक नगरे स्विस स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिका से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी।

0: देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 7:05 हुए हैं और कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में हम आपसे सबसे पहले साझा करते हैं आज का विचार। हर रोज़ एक नया विचार लेकर आते हैं, क्योंकि हर रोज़ सुबह होती है, हर रोज़ शाम होती है, और हर वक्त जो है एक नया आयाम हम तय करते हैं। तो विचार के साथ हमें दिन भर की एनर्जी जो है वो मिलती है और सोचने के लिए एक मायना मिलता है। जीवन में कहते हैं कि कुछ नया करना हासिल है तो पुराने तरीकों को बदलना होगा, और इससे बड़ी बात, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अपने बीते हुए कर्मों और घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे उन गलतियों को कभी ना दोहराने का संकल्प रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे छोड़ देना या हार मान लेना विकल्प नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें अच्छे के बारे में सोचना चाहिए, अपना भी अच्छा हो और दूसरों का भी अच्छा हो। कई बार हमें स्वार्थी सोच अपने तक सीमित कर देती है, और ऐसे में हम जब अच्छी बातें करते हैं तो उनमें वो अच्छी भाव नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। तो इसलिए जब तक आप और हम ये सोचते हैं कि उसके लिए कोई और जिम्मेदार है जो घटनाक्रम घट रहे हैं, तब तक हम वैसे नहीं पाएंगे जब तक हम वैसे बनना चाहते हैं। ज़रूरी है कि हम जीवन के साथ जी रहे हैं तो अपने दिमाग के साथ भी हमें जीना चाहिए, ताकि हमारा विकास भी हो और सबका विकास हो। विचार के बाद आपको लिए चलेंगे संगीत की ओर, और मौसम में जो करवट है वो बदल ली है, तो चलिए सुनते हैं मौसम से जुड़ा ही एक गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना। फिल्म थी भावी। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी

0: मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुप्रभात हमीरपुर, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय बता दें आपको 7:15।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अंतराल के बाद आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 12 जून। 12 जून के इतिहास की घटनाओं का जिक्र हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका में 1787 को सीनेटर के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा कानून पारित हुआ था आज ही के दिन। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 में रूस पर हमला किया था आज ही के दिन। ब्राजील ने 1926 में लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया था। इसके अलावा आज के दिन सोवियत यूनियन में 1937 को 8 आर्मी बालों को मृत्युदंड दिया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ ने 1952 में जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया था। दक्षिण अफ्रीका में 1964 को रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा भी आज के दिन दी गई थी। ब्रिटिश चुनावों में 1987 को मार्गरेट थैचर की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हुई थी आज ही के दिन। रूसी संसद ने 1990 में औपचारिक रूप से रूस की संप्रभुता की घोषणा भी आज ही के दिन की थी। बोरिस एल्त्सिन 1991 में तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे 12 जून को ही। दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 1777 ने 1994 में पहली बार उड़ान भरी थी आज ही के दिन। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया गया। सीमा मुद्दे पर 2011 में भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी आज ही के दिन। स्वीडन के साथ मैच ड्रॉ होने के साथ ही 2002 में अर्जेंटीना विश्व कप फुटबॉल से बाहर हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में हुई थी 12 जून को ही। संबन्ना जॉर्जिया में समूह 8 सम्मेलन 2004 में संपन्न हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 हेतु छठी सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी 2008 में सौंपी गई थी। प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 2008 में 10वें ओशियाना सिनेफैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था आज ही के दिन। साइना नेहवाल ने 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब भी 12 जून को ही जीता था। और 12 जून को ही जन्मे व्यक्ति कौन कौन हस्तियां थीं? जर्मनी प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ था, जिसकी डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में एक है। 12 जून को ही मशहूर भारत नाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म भी 1932 में हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 1935 में हुआ था आज ही के दिन। और जिन महान हस्तियों का आज निधन हुआ है उनमें सबसे पहले महात्मा गांधी की जीवन के लेखक श्री डी जी तेंदुलकर का निधन 1972 में हुआ था 12 जून को ही। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन 1976 में हुआ था 12 जून को ही। मराठी लेखक पीएल देशपांडे का निधन 2000 में हुआ था। अमेरिकी अभिनेता ग्रेगरी पैक का निधन 2003 में हुआ था आज ही के दिन। और 12 जून को ही पद्मश्री नेकचंद सैनी का निधन 2015 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन 2017 में हुआ था आज ही के दिन। इतिहास के पन्नों में जिक्र जो घटना है उनका आपसे हमने साझा किया। अब लिए चलते हैं आपको फिर से संगीत की ओर।

0: एक कली मुस्कुराई, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक

0: बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: अंतराल के बाद सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। समय आपको बताते हैं 7:30 हुए हैं। अब ले चलते हैं आपको आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। क्या है अखबारों की आज की सुर्खियां? तो सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन हुए हवाई हमलों से पश्चिम एशिया में फिर व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी हमले बुधवार रात से बृहस्पतिवार तक सुबह ईरान के विभिन्न हिस्सों में जारी रहे। ये हमले पहले की तुलना में अधिक ताकतवर थे। वहीं जवाब में ईरान ने जो है वो कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस वीडियो में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित PM बनने पर बधाई दी है। बुधवार शाम को पोस्ट किए गए इस वीडियो को बृहस्पतिवार दोपहर तक 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके थे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर POK के अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोलीबारी और उसमें कई लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान की हर तरफ आलोचना हो रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को भूटान की राजधानी थिम्पू में रॉयल भूटान पुलिस को जो है आग बुझाने वाले 4 अत्याधुनिक वाहन सौंपे।

अगली सुर्खी है होर्मुज जलमार्ग से ओमान तट के पास भारतीय चालक दल वाले एक और जहाज एमटी जलवीर पर बृहस्पतिवार को अमेरिकी हमले के बाद आग लग गई। इस तेल टैंकर जहाज पर सवार चालक दल के जो सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। बीते चार दिन में इस क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी सेना का यह तीसरा हमला है। एक दिन पहले ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले की 3 भारतीय नाविकों की इसमें मौत हो गई थी। ओमान तट के पास पलाऊ के ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटे वेलो पर अमेरिकी हमले के बाद लापता 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इनमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के भालू गांव के आदित्य शर्मा, उत्तर प्रदेश के देवरिया के शिवानंद चौरासिया, आंध्र प्रदेश निवासी चीफ इंजीनियर सुरेश पटनाला शामिल हैं। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और केंद्र सरकार ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी। अगली सुर्खी है गृहिणियाँ सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। उनकी ओर से परिवार व समाज के लिए किए जाने वाले घरेलू काम व देखभाल को उचित कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी गृहिणी की सड़क हादसे में मौत पर उसके परिवार को मिलने वाले मुआवजे में घरेलू देखभाल के नुकसान को अलग मद के रूप में शामिल किया जाएगा। और अब हिमाचल से जुड़ी हुई सुर्खियां आपसे साझा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीरवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मसलों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान खत्म किए जाने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्रियों की मांग पर जारी की गई 25,000 करोड़ रुपये की धनराशि इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, यह कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का आग्रह किया। अगली सुर्खी है हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकार डॉक्टर जोगेंद्र हाबी और इंद्रजीत सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिरमौर जिले के राजगढ़ के जालग गांव निवासी डॉक्टर जोगेंद्र हाबी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं लोक गायक कुल्लू के इंद्रजीत को उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय को मिली सूचना के अनुसार संगीत नाटक अकादमी ने इसकी घोषणा की है। दोनों कलाकारों को यह सम्मान उनके हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। अगली हिमाचल से जुड़ी सुर्खी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव पर जाने वाली सरकारी कर्मचारियों को अब पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अभी अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को 40% वेतन के साथ महंगाई और आवास भत्ता दिया जा रहा था। सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिसके तहत स्टडी लीव पर रहने वाले कर्मियों को उस शिक्षा की अवधि के दौरान 100% वेतन मिलेगा। ये थी आज की अखबारों की सुर्खियां और सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में ले चलते हैं आपको फिर से संगीत की ओर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले जो गीत आपने सुना वो फिल्म थी गैम्बलर और आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। जी हाँ श्रोताओं, रेडियो के गानों के पिटारे में हर तरह का संगीत यहाँ आपको मिलता है और रेडियो का यही प्रयास रहता है कि हर वर्ग के श्रोताओं को अलग अलग मंच पर अलग अलग तरह के रंग के गीत पेश किए जाएं। और इसी के तहत सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आपको हर रोज़ नए गाने हम सुनवाते हैं। तो चलिए अब ली चलते हैं आपको खेल खबरों की ओर और सुनते हैं क्या कुछ खेल पटल पर हुआ है। फीफा विश्व कप 2026 में विवादों का अंत नहीं हो रहा है। ईरान की टीम ने बीजा और सोमालिया के रेफरी को वापस भेजने पर जो है विवाद पैदा किया है। अब हेती की फुटबॉल टीम को विश्व कप जर्सी बदलनी पड़ी है। हेती ने जर्सी के डिजाइन के जरिए 224 साल पुराने एहसान के लिए पोलैंड को धन्यवाद कहने की कोशिश की थी। इसके लिए हेती टीम की जर्सी पर कमर के पास पोलैंड का सफ़ेद और लाल झंडा डिजाइन किया था। इसे फीफा ने राजनीतिक संदेश मानते हुए जर्सी को बदलवा दिया है। और अगली खेल खबर है, फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन समारोह से ठीक पहले तक वार्म अप मैचों का दौर जारी है। रिकॉर्ड छठी बार विश्व कप खेलने उतर रहे रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने अपनी आखिरी वार्म अप मैच में वीरवार को नाइजीरिया 2-1 से शानदार जो जीत है हासिल की। लेकिन कई मौके ऐसे भी आए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल के रिकॉर्डधारी रोनाल्डो एक भी गोल नहीं कर सके। और अगली सुर्खी है, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आगाज शुक्रवार से इंग्लैंड में होने जा रहा है। अब तक के सबसे बड़े संस्करण में भारतीय महिला टीम वनडे विश्व कप चैंपियन के रूप में उतरेगी। वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पारंपरिक दबदबा तोड़ चुकी टीम के पास अब क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप का विश्व खिताब हासिल करने का सुनहरा मौका है। त्रिकोणीय वनडे क्रिकेट सीरीज में भारत 1-8 पर 349 रन बनाने के बावजूद बारिश के चलते डकवर्थ लुईस नियम के कारण 4 रन से हार मिली। पहला मैच भारत ने श्रीलंका से जीता था। भारतीय जूनियर क्रिकेट समिति ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी है। टीम 4 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में 3 वनडे और 4 दिन वाले टेस्ट मैच खेलेगी। अगली खेल खबर है, निखिल चौधरी 62 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले भारत में जन्मे पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2027 की ICC कैलेंडर में तारीख तय हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के ने जो है विश्व कप का आयोजन 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक कराने का फैसला लिया है। यह फैसला 30 मई को अहमदाबाद में ICC बोर्ड बैठक में लिया गया था, जिस पर जुलाई में एडिनबर्ग में वार्षिक आम बैठक में फाइनल मुहर लगेगी।

मुकाबलों के बीच हो रही 100वीं अखिल भारतीय ट्रेडर्स कप हॉकी प्रतियोगिता मुकाबले जारी हैं। भारतीय एथलेटिक्स संघ 20 जून को दिल्ली में पहले भारतीय एथलेटिक्स अवार्ड्स का आयोजन करेगा। यहां वर्तमान और पूर्व एथलीट, कोच, टेक्निकल अधिकारी, राज्य संघ प्रायोजक और अन्य हितधारकों को सम्मानित किया जाएगा। कुल 30 कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें श्रेष्ठ पुरुष, महिला, कोच, लाइफ टाइम अचीवमेंट और श्रेष्ठ राज्य शामिल हैं। ये थी आज की खेल खबरें जो सुर्खियां बनी थी, हमने आपसे साझा की। और सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में ले चलते हैं आपको फिर से संगीत की ओर।

अभी आपने अनपढ़ फिल्म का गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। 7:50 होने वाले हैं और थोड़ी देर में आप सर सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। इससे पहले आपसे कुछ बात कहना चाहेंगे कि देखिए, हम और आप समाज का प्रमुख अंग हैं और ऐसे में आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमें सतत प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आजकल ईगो में बढ़ जाते हैं और देखते देखते अपना जो है आपा खो बैठते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शांत रहें, विवेक

मन बने और खुली सोच रखें, जो हमें अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसी सोच के साथ हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे ही अच्छा लगे, दूसरे का अहित हो जाए तो हो जाए, तो ऐसी सोच से हमें बचना चाहिए। यही कारण है कि समाज के अंदर फिर विकृतताएँ और दूसरी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। इसी कारण हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, और कहते हैं ना, जिसका विशाल दृष्टिकोण होता है वही बड़प्पन में उसकी श्रेणी में गिना जाता है। तो चलिए, बातचीत को यहीं विराम देते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अपना बना लो, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभिमान फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: तो जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आपने सुना। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हर तरह के गीतों की अपनी तरह की अपनी ही कशिश होती है, क्योंकि समय और हालातों के मुताबिक उस संवेदनाओं के स्तर को जहन में रखते हुए गीतों को संगीत में पिरोया जाता है। और सुप्रभात हमीरपुर में हम आपको यही पेश करते हैं। तो अब कार्यक्रम का समय हो रहा है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुप्रभात हमीरपुर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात का अंक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: आज सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
6: We signed this year a free trade agreement with Europe.
7: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
9: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
8: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी।

संजय शर्मा अब अंक विस्तार से। एम्स बिलासपुर की आपात सेतु पहल को प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत बिलासपुर जिला के अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से करने के बाद प्रबंधन के साथ बैठक में रखी। उन्होंने कहा कि पहल के माध्यम से आपात स्थिति में एक से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किए जाने वाले मरीज को पूरी जानकारी प्रदेश में NHIA को 3 और मार्गों के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले इन मार्गों का संचालन लोक निर्माण विभाग के पास था, मगर अब इन सड़कों का जिम्मा NHIA को मिलने से यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और बेहतर रखरखाव की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन 3 राष्ट्रीय मार्गों में पंजाब और हिमाचल प्रदेश सीमा से ऊना आम्ब मुबारकपुर रानीताल खंड पठानकोट चंबा भरमौर खंड और पांवटा साहिब के निकट से हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा तक का हिस्सा शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंची। टीम यहां अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए आई है, जिससे धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच लौट आया है। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक झलक को पाने के लिए हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया।

नशा तस्करी और नशे के खिलाफ जिला हमीरपुर पुलिस ने मंगलवार को जिले भर में विशेष तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीमों ने पुलिस मुख्यालय और अन्य सीआरडी के निर्देशानुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की। अभियान के तहत पुलिस थाना हमीरपुर, नदौन, बड़सर और भोरनी सुजानपुर के अंतर्गत चिन्हित 24 थानों पर तलाशी और छापेमारी की गई। पुलिस ने नशा तस्करों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर नजर रखते हुए उनके ठिकानों पर की जांच की। पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जिले में नशे के बढ़ते खतरे पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है और नशे तस्करों पर निगरानी रखना भी है।

वन विभाग बिजली के तहत बाड़ा के जंगल में आग लगने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। यह पहली बार है कि जिले में जंगल में आग लगाने वाले मामले में लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की पुष्टि एसपी हमीरपुर ने एक माध्यम से की है।

ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं अब से लेकर 9:20 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। कृपया लेके प्रतीक्षा कीजिए।

0: सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: पहले यादों की वादियों में संग संग दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग,
2: दिल में एक लहर सी,
0: ऐसे गाने जो चुरा लें आपका दिल। दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
5: विविध भारती से आप सुन रही हैं चित्रलोक।

0: फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये एनिमल फिल्म का गाना है।

और अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गाना। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा।

0: जब शोर भरी दुनिया भी विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर।
1: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
0: रंग तरंग हर रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

प्रकृति से चित्रलोक, अलकायाग्निक और शान की आवाजें, उनका नाम बस इतना सा ख्वाब है।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 होने को हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, लेकिन इससे पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। धनेटा से अपराध नियंत्रण एवं समाज सुधार संगठन धनेटा से प्राप्त सूचना अनुसार धनेटा में चौथे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शनिवार 13 जून 2026 को सुबह 11 बजे सरकारी अस्पताल धनेटा में आयोजित होगा। संगठन ने क्षेत्र के सभी युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों से इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है, रक्तदान ऐसा महादान है जो किसी की जिंदगी को बचा सकता है और उसे नया जीवन दे सकता है। संगठन के अध्यक्ष अनिल गोरेरिया ने कहा, रक्तदान न केवल मानवता की सेवा है बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। उन्होंने लोगों से इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 98-178-24-974, दूसरा नंबर है 94-180-17-721 और तीसरा नंबर है 70-184-73-128 पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि होंगे उपस्थित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। 13 व 14 जून को आयोजित होंगी परीक्षाएं। आकांक्षी जिला चंबा में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर। 1400 अधिकारी व कर्मचारी देंगे अपनी सेवाएं। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज समर फेस्टिवल के तहत हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड के लिए पंजीकरण लिंक शिमला के उपायुक्त की फेसबुक पेज पर जारी होगा। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉ पॉइंट ऑकलैंड टनल को रखा गया है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नजारा दिखाया जाएगा। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। यह सेवा बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों को परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सिरमौर जिला के नाहन की ऐतिहासिक विला राउंड सहरगाह को जल्द ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए विकसित किया जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि सहरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ सैरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक सैरगाह बिलाराउंड का सौंदर्यकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि यहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि बिलाराउंड में जल्द ही ओपन जिम स्थापित की जाएगी जिससे युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूरी सैरगाह में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी जिससे शाम के समय सैरगाह में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
0: प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।
3: 13 और 14 जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडरस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल, किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडी में हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाई डिस्ट्रिक यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री की गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
0: कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पीएम मोदी से बोले सुक्खू, आरडीजी की भरपाई के लिए पहाड़ी राज्यों को 50,000 करोड़ दे केंद्र। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुक्खू ने हिमाचल के लिए मांगी 50,000 करोड़ रुपए की मदद। दैनिक भास्कर लिखता है, नीति आयोग की बैठक में उठे आरडीजी और हिमाचल हितों के प्रमुख मुद्दे। प्रदेश के सरकारी भवनों का होगा नियमित सुरक्षा ऑडिट, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, स्कूलों, अस्पतालों समेत सभी महत्वपूर्ण भवनों की होगी जांच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनगणना का कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि होंगे उपस्थित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। 13 व 14 जून को आयोजित होंगी परीक्षाएं। आकांक्षी जिला चंबा में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर। 1400 अधिकारी व कर्मचारी देंगे अपनी सेवाएं। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: उसमें रोल था छोटी लड़की का,
1: जी
0: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर, तो कहने लगे खुर्शीद खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई?
1: जी
0: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा जैसे आप कहें, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया,
1: अच्छा, उस समय से
0: और
1: आपका
0: मुझे
1: नाम
0: वो
1: बदला।
0: नाम
1: जी
0: इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि
1: जी
0: श्यामा कौन है।
1: जी बिल्कुल।

दोस्तों 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था

0: तराना
1: जी
0: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
2: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊँ, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं।
1: जी,
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा नहीं किया।
0: अच्छा। कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा

0: रिकवरी के संभावनाएं हैं, परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लघु वार्ता।

लघु वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति योजना क्या है? जी हाँ, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हम आपको बताते हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम 15-पॉइंट प्रोग्राम के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत शामिल प्रमुख शैक्षिक और छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है, जिसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक ना हो। और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए है, जिसकी पारिवारिक आय सीमा जो है 2 लाख तक निर्धारित की गई है।

चलिए अब बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं के जो योग्यता सह साधन हैं वो क्या हैं, यानी कि मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति, तकनीकी और व्यावसायिक प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अन्य पहल भी शामिल है। नया सवेरा सरकारी निजी नौकरियों और तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग, नई उड़ान, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा पास करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

जी हाँ, 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं इसमें लागू की गई हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य ये क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत शामिल प्रमुख शैक्षिक और छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण हम आपको बताते हैं। जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है वह कक्षा 1 से 10 तक के मेधावी छात्रों को दी जाती है जिनके परिवार की आय 1 लाख से अधिक ना हो, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए है जिसकी पारिवारिक आय सीमा 2 लाख तक निर्धारित है। योग्यता सह साधन मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति तकनीकी और व्यावसायिक प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए तय की गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए और भी कुछ शामिल किया गया है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत गाइडलाइंस और पात्रता मानदंड देखने के

लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर हम किसी विशेष कक्षा, कोर्स या छात्रवृत्ति योजना की पात्रता के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पोर्टलों पर आप जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे साझा किया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लोग आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं और पढ़ाई में सक्षम हैं, ऐसे लोगों के लिए इस योजना का सूत्रपात किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक नई दिशा और रास्ता तय करना है। जैसा कि हमने कहा, सरकारी और निजी नौकरियों और तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा पास करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है और समय समय पर इसके बारे में जानकारी भी दी जाती है।

तो एक बार पुनः बता देते हैं, इन योजनाओं के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप माई स्कीम पर जा सकते हैं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:15 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल कवाली।

अभी आपने ये कवाली सुनी, फिल्म थी बहू बेगम, आवाज़ें थी मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। कार्यक्रम महफिल कवाली आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

गज़ल फिल्म की कव्वाली अभी आपने सुनी। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से।

0: तो देखो।
1: अरे रंग जमाया।
0: इसके बाल तो देखो।
1: अरे झूठे मूठे।
0: इसके दांत तो देखो।

0: चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से चक्कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: अरे ना जी ना जी ना जी,
0: डर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय।

0: अभी आपने कव्वाली सुनी, फिल्म थी कातिलों के कातिल, आवाज़ें थी महेंद्र कपूर, अजीज़ नाजन की और साथियों की। कार्यक्रम महफिल कव्वाली आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से।
1: आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले कव्वाली। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:45 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम लोक रंग

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे श्रोतियां जो अस्मिता रा प्यार भरा नमस्कार राम राम। तो श्रोता आज बिल्कुल हाजिर हो चुकी रे कार्यक्रम दा छाड़ छाड़ लोकगीत सौगी तो मनोरंजन करने तो बिल्कुल देर ना करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत अं करते हैं इस मिठे जे लोकगीत सौगी।

0: गांव में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लोकरंग कार्यक्रम इस वक्त तुम्हें सुन दे आया आकाशवाणी हमीरपुर दे FM बैंड 101.8 MHz पर। ताउन सुना कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और यह अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल, विश्वास, विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट ऑकलैंड टनल है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नजारा दिखाया जाएगा। वहीं ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारत धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिससे बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 11:05। अब से लेकर दिन के 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

ताजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उधास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चंदन दास की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। कलाम था निदा फाजली का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: बहुत जल्द संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक अनमोल श्रृंखला। आएंगे इसमें जाने माने बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। तो सुनते रहिए विविध भारती संगीत सरिता। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे थे पीनाज मसानी की आवाज़ में यह गज़ल। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं, अब सुनिए कार्यक्रम वनिता मंडल।

वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी अस्मिता। सखियों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं बातें बहुत सारी, और प्यारे प्यारे गीत सुनवाते हैं आपको आपके मनोरंजन के लिए भी, और जानकारियां होती हैं ऐसी जो हमारे बहुत काम आती हैं। तो आज भी जानकारियों का सिलसिला करते हैं शुरू। तो सखियों, जैसे कि हमें पता है कि आज है 12 जून और आज का एक विशेष दिन भी है जिसे हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे सखियों। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा तथा बेहतर भविष्य का अधिकार दिलाने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना है। अगर इस वर्ष की थीम की बात की जाए तो इस वर्ष की थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, यानी बच्चों के लिए निष्पक्ष

प्रत्यक्ष अवसर और वयस्कों के लिए सम्मानजनक रोजगार। ये थीम खेल जगत में दिए जाने वाले रेड कार्ड के प्रति का उपयोग करती है, जो किसी गलत कार्य को तुरंत रोकने का संकेत देता है। इसका संदेश है कि बाल श्रम को समाज से पूरी तरह समाप्त किया जाए और वयस्कों को पर्याप्त एवं सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चों को काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। बाल श्रम के प्रमुख कारणों की अगर बात की जाए तो गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, जागरूकता का अभाव, सस्ते श्रम की मांग, ये सब है। और इसके दुष्परिणामों की अगर हम बात करें तो बच्चों का बचपन इससे छिन जाता है, शिक्षा से बच्चे वंचित रह जाते हैं, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, उनका शोषण और दुर्घटनाओं का खतरा और भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ देश के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहनों, बाल श्रम की सूचना संबंधित अधिकारियों को जरूर देनी चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। बाल श्रमिकों से काम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। समाज में एक जागरूकता फैलानी और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ये सब हमारे कर्तव्य हैं और हमें पूर्ण निष्ठा के साथ इन कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। सखियों, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा, सुरक्षा और खुशहाल बचपन। तो इन दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर ये संकल्प लें कि हम बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हर बच्चे को उसके सपनों को पूरा करने का अवसर ज़रूर दें, ताकि बच्चों के हाथों में किताबें अच्छी लगें, औजार नहीं। और ये दिन मनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है ताकि हम इस दिन के प्रति जागरूक हों और साथ ही साथ अपने दायित्वों को समझें और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को रोक लगाएं जिनसे किसी के भविष्य की हानि हो रही हो। तो सखियों, ये तो हमने बात की बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में, और अब वक्त है एक खूबसूरत से गीत का, क्योंकि जानकारियों के साथ साथ होता है मनोरंजन इस कार्यक्रम में। लेकिन गीत में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपके साथ साझा करेंगे। सखियों, अपराध नियंत्रण एवं समाज सुधार संगठन द्वारा धनेटा में चौथा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर शनिवार 13 जून 2026 को प्रातः 6 बजे सरकारी अस्पताल धनेटा में आयोजित होगा। संगठन ने क्षेत्र के सभी युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। रक्तदान ऐसा महादान है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन प्रदान कर सकता है। एक यूनिट रक्त कई मरीजों की जिंदगी बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। संगठन के अध्यक्ष सुनील गुलेरिया ने कहा है कि रक्तदान न केवल मानवता की सेवा है, बल्कि ये सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान शिविर को सफल बनाने का आग्रह किया है। तो सखियों, ये थी एक जरूरी सूचना। अब वक्त संगीत का, तो आइए मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, वनिता मंडल कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी बहनों का। और कार्यक्रम में इस गीत से पहले हमने बात की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में, और अब बात करेंगे हमारी बहनों के बारे में। जी हाँ भाई, हमारी बहनें भी उतनी ही ख़ास हैं हमारे लिए। और देखिए बहनों, अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर उसको समय रहते हम नहीं सुधारे तो वो हमें एक खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे देखिए, अक्सर हमारा सिर दर्द हुआ तो दर्द निवारक गोली खा ली, कमर दर्द हुआ तो गोली खा ली, घुटनों में तकलीफ है तो फिर एक गोली ले ली। आजकल दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए दर्द निवारक गोली का इस्तेमाल आम बात हो गई है, ख़ास तौर पर शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण। गर्दन दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं अब कम उम्र में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में बहुत से लोग दर्द की वजह समझने की बजाय सीधे पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। दर्द को केवल तात्कालिक राहत के नज़रिए से देखने की बजाय इसके पीछे की वजहों को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। सखियों, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोगों के पास आराम और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय कम होता जा रहा है। काम का बढ़ता दबाव, लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव के कारण गर्दन दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द तथा जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोग दर्द के मूल कारण का पता लगाने या जीवन शैली में बदलाव करने के बजाय तुरंत राहत पाने के लिए पेन किलर का सहारा लेने लगते हैं। इसके अलावा दर्द निवारक दवाएं आसानी से उपलब्ध होने के कारण भी उनका उपयोग बढ़ा है। कई लोग बिना चिकित्सीय सलाह के इन दवाओं का सेवन करने लगते हैं। तो सखियों, हम बस यही चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसी तकलीफ हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है और उसका उपचार भी करना है, लेकिन तुरंत ये पेन किलर जो हम आम जिंदगी में खाते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पेन किलर हमें उस दर्द से तुरंत आराम तो दे देते हैं लेकिन बाद में इन्हीं पेन किलर्स की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें जो है वो बढ़ने लगती हैं। तो इसका अगर हम अधिक सेवन भी करते हैं तो इसके हमें काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जैसे अक्सर और लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसे पेट में छाले और जलन। लगातार दर्द निवारक दवाएं लेने से पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे गैस, जलन, अल्सर और रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। किडनी पर असर, दवाइयों से किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है व किडनी रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। लीवर को नुकसान, कुछ दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन लीवर पर दबाव डाल सकता है जिससे उसे नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। हृदय रोग का जोखिम भी होता है इसमें, जैसे कुछ दर्द निवारक दवाएं लंबे समय तक लेने पर उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही कुछ पाचन संबंधी समस्याएं भी होती हैं, जैसे मतली, उल्टी, कब्ज या दस्त जैसी शिकायतें भी इनकी वजह से बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ पेन किलर्स खून को पतला कर सकते हैं जिससे चोट लगने पर रक्तस्राव अधिक हो सकता है। दर्द अस्थायी रूप से दब जाता है लेकिन बीमारियों का असली कारण पहचानने और उसका इलाज कराने में इस देरी हो सकती है, इसलिए इन पेन किलर्स का इस्तेमाल करने से पहले हमें बहुत सोच विचार करके ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब तक हो इन पेन किलर्स को लेने की बजाय घरेलू तरीकों से अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करें। यदि उन घरेलू उपचारों से आप हमें कोई उपचार नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब हम जाकर पेन किलर ले सकते हैं, वो भी डॉक्टरी परामर्श से, वो भी हमें ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। जैसे देखिए बहनों, प्राकृतिक उपचार की अगर हम बात करें तो दवा के बिना भी राहत हमें मिल सकती है। बार बार होने वाले दर्द, हल्के दर्द में हर बार दवा लेने की बजाय हम कुछ प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार जो है वो अपना सकते हैं, जैसे बाम या मालिश, हल्के दर्द में दर्द निवारक जेल या बाम लगाएं, हल्की मालिश से भी कुछ मामलों में राहत मिल जाती है। इसके साथ ही मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द या शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाली अकड़न में गर्म या ठंडी सिकाई फायदेमंद होती है। नियमित व्यायाम, योग और स्ट्रेचिंग भी दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दर्द निवारक दवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। यदि दर्द बार बार हो रहा है या लंबे समय तक बना है तो जांच ज़रूर करवानी चाहिए। और बिल्कुल डायबिटीज़ हो गई या हाई बीपी या हार्ट की दिक्कत या किडनी की भी जो भी समस्या कोई व्यक्ति अगर जूझ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी इन पेन किलर्स को लेने से हमें दूरी बनानी चाहिए। और अगर ऐसी समस्या बन रही है कि इन घरेलू उपचारों से भी समस्या कम नहीं हो रही है तो डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें और साथ ही साथ जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में इन चीज़ों का खतरा बढ़ता है। इसलिए जब भी कोई तकलीफ हमें होती है

0: ज़रूरत है हम उस चीज़ के बारे में जानें और कोशिश करें कि घरेलू उपचारों से उस चीज़ का निवारण ढूंढें, क्योंकि हल्की पेट दर्द, कमर दर्द, ये तो हमारी आम जिंदगी का एक हिस्सा है। जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सब तकलीफ़ें हमें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी पेन किलर्स खा लें, क्योंकि पेन किलर हमें थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर देती है, लेकिन बाद में उसके बहुत नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन पेन किलर्स से जितनी दूरी बना सके उतनी बनानी चाहिए। विशेष काम है अगर बहुत ज़्यादा दर्द है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, घरेलू उपचारों से भी उसका कुछ समाधान नहीं निकल रहा है, तो लिया जा सकता है, वो भी हमें डॉक्टरी जांच के साथ ही लेनी चाहिए, डॉक्टरी परामर्श के साथ ही लेनी चाहिए, अपने आप बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और बहनों, ये बात की हमने कि जैसे हम हमारी बहनें परिवार का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखती हैं, तो अपना जब बात अपनी सेहत की आती है तो भी अपना ध्यान वैसे ही रखना है। घरेलू उपचार पहले खुद पर ट्राई करने हैं, उसके बाद दवाइयों की ओर जाना है। और अब वक्त है एक और म्यूज़िकल ब्रेक का, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, वनिता मंडल कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। सखियों, अब बात करेंगे थोड़ी सी किचन की। जी हाँ, देखिए, खाना बनाते समय हम में से अधिकांश लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां भोजन के स्वाद, बनावट और गुणवत्ता को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और इसमें हम जानेंगे कि कहाँ हम चूक करते हैं और कैसे हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। सबसे पहली गलती कि अगर हम बात करें तो गलती हम ये करते हैं कि हम दही में नमक पहले से मिलाकर रख देते हैं। इससे दही पानी छोड़ने लगता है और जिससे रायता पतला हो जाता है। दही का पानी प्रोटीन, कैल्शियम और कुछ विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। अधिक पानी निकलने पर इन पोषक तत्वों का कुछ हिस्सा भी कम हो सकता है, इसलिए नमक को रायते या दही में परोसने से ठीक पहले ही मिलाना चाहिए। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि तेल या घी को धुआं निकलने तक गर्म करना सही नहीं है। अत्यधिक गर्म तेल मसालों के रंग, स्वाद और सुगंध को नष्ट कर देता है। साथ ही मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और लाभकारी यौगिक नष्ट होने लगते हैं।

जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ पर कम जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ कम हो सकता है। और सुधारना हमें ये है कि पिसे मसाले केवल गरम तेल में डालें, धुआं निकलते तेल में बिल्कुल भी नहीं। अगली गलती हम ये करते हैं कि आटा गूंधने के बाद उसे कई घंटों तक छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे आटे में ग्लूटेन अधिक विकसित हो जाता है जिसके कारण रोटियां सख्त और चबाने में मोटी हो सकती हैं। सख्त रोटियां पाचन में असुविधा पैदा कर सकती हैं और सुधार हमें ये करना है कि नरम और फूली हुई रोटियों के लिए आटे को लगभग 30 मिनट तक ही विश्राम देना ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगली गलती की बात करें तो हम करते हैं गलती, वो है चावल को कई बार पानी से धोने से उसकी सतह पर मौजूद प्राकृतिक स्टार्च की परत काफ़ी हद तक निकल जाती है जिससे उसकी बनावट प्रभावित हो सकती है। साथ ही घुलनशील कुछ विटामिन और खनिज भी कम हो सकते हैं, विशेषकर यदि चावल फोर्टिफाइड हो। इसलिए हमें सुधार ये करना है कि चावल को केवल एक या दो बार ही धोना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो बहनों, ये तो हमने बात की रसोई से, जो आम तौर पर हम अपनी आम जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां जो है वो कर देते हैं, इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इन्हीं बातों के साथ आज का ये वनिता मंडल का कार्यक्रम भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं प्यारे प्यारे गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी रेडियो दोस्त अस्मिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हाजिर है लेकर आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है सैनिकों के लिए, जिसमें होते हैं चुनिंदा लेकिन बेहद ही खूबसूरत गीत। तो देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रंग दे बसंती फिल्म के इस गीत के साथ। स्वर है दिलेर मेहंदी व साथियों का।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शान और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में सुनिए दिल चाहता है फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों माफ कीजिएगा, सीडी में आई खराबी के कारण ये गीत आपको हम पूरा नहीं सुनवा पाए। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे सपनों की अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनिए दिल है के मानता नहीं इस फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर का 1 बजा है, बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से ज़रा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ ख़ास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझकर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, ज़रा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी ज़िंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोज़ाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है, विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस समय जहाँ से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहाँ से ये टिप्पणियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है वही। वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, ज़रा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफ़र में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियाँ। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोज़ाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या ना माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए

गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा, कलाकारों के नाम ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सज़ा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहाँ से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि पला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिख थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम

0: में आपको ये गाना मिल जाए, बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारेख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाएँ। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, ज़रा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आँखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की

0: कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। ज़रा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं, कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा, मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आ रही हैं, इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा, तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम,
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।
1: गम

0: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपने ज़बान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा जरा।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज़ में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए ज़रा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़रा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियाँ बच्चों को बचपन से आज तक धर्मपत्नी सुना

चिपकती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ। मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए, अच्छी बात है ये, सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियाँ भी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मज़ा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a 2-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
3: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably. NTA said that even small improvements in examination design can have a positive impact on the experience of candidates during a high-stake examination. These measures have therefore been introduced with the objective of making the examination process more comfortable and candidate-friendly while maintaining the highest standards of fairness and security. Candidates are advised to read the instructions given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for the smooth conduct of the examination. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France Sanjeev Singla said, "The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education." He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups.
4: Prime Minister would be here on the 14th of June. Both President Macron and Prime Minister Modi would be inaugurating Bharat Innovate Summit in Nice, which is the largest ever deep tech event being held by India outside of India. The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by Ministry of Education. There are 120 deep tech startups covering, I think, 12 or 13 areas, which have been selected from over 1,200. And some of these startups cover critical areas when it comes to sustainable development, blue economy or next generation manufacturing, next generation communication.
0: The Prime Minister is scheduled to visit Nice, France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Meanwhile, Secretary General of IMO has underscored the need to protect seafarers, civilian shipping and the freedom of navigation at all times.
5: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadel tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language.
0: The two-day BRICS Agriculture Ministers Conference began today in Indore, Madhya Pradesh. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan welcomed all delegates and stressed on carrying forward the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the whole world is one family. He said under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's approach is built on peace over war and cooperation over conflict. The minister said the country's total food production has risen to nearly 376 million tons. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people have been killed and 37 others wounded as the Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground. Although the demonstration started peacefully yesterday, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. The demonstrators were demanding justice for the 30 people who were killed and 200 injured in clashes between protesters and security forces in POK on Tuesday. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. A report.
6: Born in Uttarkashi, Uttarakhand, Rana leaves behind a legacy that spans more than three decades as a shooting legend and national coach. He won multiple medals at the Asian Games and Commonwealth Games. Rana won a gold medal at the 1994 Milan World Championship in the junior category with a world record score, announcing his arrival on the global stage at the age of just 18. Jaspal has been widely credited as the man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-hosts Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6-21-9 in a one-sided quarter-final clash. The Intermeteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
4: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
7: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
9: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के ज़ापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
7: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रही तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनिए रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। राजा मेहंदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम ख़त्म होता है। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

हम आकाशवाणी के हामिरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है।
1: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वही हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिंहुता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की जरूरत है और खेलों के माध्यम से युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इस अवसर पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत खरगट निवासी नवीश कुमार को स्वर्ण पदक जीतने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे समाप्त करने के अभियान पर चल रही है। विनोद कुमार ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 2000 से अधिक शैक्षणिक व अन्य जनहित संस्थाओं को बंद कर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोक दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को

0: पाने के लिए छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों को बंद कर रही है, जो सरासर गलत है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को बंद कर प्रदेश का भविष्य नहीं बना सकती। उन्होंने स्कूल बंद करने के निर्णय को जन विरोधी करार दिया और कहा कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस लें। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी और तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, वर्षा, आसमानी बिजली, कड़कने और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।
1: 12 जून तक लगभग प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 13 और 14 जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि
0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है फाइबर अर्थव्यवस्था, भारत का अगला वैश्विक अवसर। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: फाइबर के साथ भारत का 5,000 वर्ष पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गांवों, परंपराओं और सामूहिक पहचान में गहराई से गुंथा है। बुनी हुई हवा कहलाने वाली मोहन जोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर समस्त महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा रहा है। आज जब दुनिया वैश्विक स्थिरता की क्रांति की कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है। दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता था, आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाजारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक, यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर ऐसे टिकाऊ और पौधों आधारित पदार्थ है, जो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भांग, केला, पीएलएफ, फ्लेक्स, रेमी सीसल, मिल्कवीड और कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स और प्रीमियम उत्पादों में उच्च मूल्य उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए नए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आय, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएं और ट्रेसबल सोर्सिंग की आवश्यकताएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक नई फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। उपभोक्ता अब अपने पहले कपड़े के आराम, पसीना सोखने की क्षमता या ब्रीदेबिलिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण बदलाव भारत में फाइबर की खपत को आज के 15 एमएमटी से बढ़ाकर 2030 तक 23 एमएमटी तक ले जाने वाला है। दुनिया अब तेजी से वही तलाश रही है जिसे भारत प्रदान कर सकता है, नैतिक, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर जो सदियों के अनुभव पर आधारित हैं। इस विजन को एक स्पष्ट संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2026 से 31 तक के लिए 5,664 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाले मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत न्यू एज फाइबर्स के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन एक व्यापक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है जो चार प्रमुख स्तंभों कृषि, सूत्र, खेती और कच्चे माल के विकास के लिए, इन्फिनिटी अनुसंधान और नवाचार के लिए, ग्राम सेतु अवसंरचना और उद्यम सृजन के लिए तथा GMPS ब्रांडिंग और बाजार विकास के लिए आधारित है। इस नीतिगत ढांचे की शक्ति दशकों से जारी वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित है जिसके ठोस परिणाम पहले से ही सामने आ चुके हैं। इस सेमिनार ने मानकों, प्रसंस्करण अवरचना और संस्थागत वित्त पोषण में मौजूद खामियों को भी स्पष्ट रूप से पहचान की जो एक ऐसे मिशन को दर्शाता है जो केवल नीति नहीं बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इसके लाभ पूरी मूल्य श्रृंखला में फैलते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आराम और कार्यक्षमता मिलती है, निर्माताओं को प्रीमियम और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलता है और किसानों को विविध प्रकार की मांग और अधिक मजबूत आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:10 हुए हैं। आपसे लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के और उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी जाते

0: हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
1: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का, चलिए
0: हाँ,
1: आप ही
0: तुम
1: की
0: बिन, तुम बिन।
1: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण रह नहीं हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन पे, बैठे हैं सफीने पर।

0: यकीन थे तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है, ये मेरी अधिकार कविता है।
1: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: सरस्वती चंद्र का
1: जी
0: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
1: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैलाश सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से। हाँ
0: बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, काटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना अपना
1: यस,
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना? तो उन दिनों में बच्चों के कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत।
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
1: हाँ
0: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत बहुत।
0: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए, आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
1: है।
0: इसलिए आप सुनना चाहती
1: बहुत
0: हैं।
1: पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पेश और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए,
0: जी
1: तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी,
0: जी
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी,
0: जी
1: ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के। जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं, तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी,
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस

0: आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: इन। नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा। तो
0: बिल्कुल जी,
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी। तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी।
1: वो बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके। तो
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास
1: जी
0: कौन
1: जी
0: सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं देवर
0: जी,
1: के, एक है एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा
0: अच्छा।
1: दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ, बिल्कुल यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही, पालगाना का इंदौर से मैडम जी।
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02-2400-2462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2400-2466, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02-2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छन कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन

वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी।
उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ

रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए।

मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज़ घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थीं और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आईं लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फ़ोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती? जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़ी

बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन

0: अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक?
0: हाँ भाई ठीक बस।
1: अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
0: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
1: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की गड़गड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो?
0: ठीक हूँ।
1: परेशान हो क्या?
0: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
1: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
0: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
1: अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। 1-2 बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन निक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चयन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युव मंच। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से सुनेगा प्रादेशिक समाचार। नए पुराने फिल्मी गीतों के संगम पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई स्थानीय बोली में सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

श्रोताओं, हिंदी समाचारों का समय रहेगा शाम 7 बजे, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 7:45, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 8:44 तक आकाशवाणी शिमला से सुनेंगे विशेष कार्यक्रम। समाचार संध्या का आज का अंक सुनिएगा रात्रि 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे सुनेंगे News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित नियमित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर रात्रि ठीक 10:30 पर। सभा के अंत में देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार। और अब समय है भजन संध्या का।

0: आकाशवाणी राय हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz से तुहां सुनी करदे कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम अज समय एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक रहा।
1: अरे बेटा, जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ओम प्रकाश रे गाए इसी भजना सोगी अपने श्रोतियां ते लैंदे है कार्यक्रम खत्म करने री अनुमति कने बोलदे हैं राम राम।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवमंच।

0: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

युव मंच कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, ये कार्यक्रम होता है जानकारियों का और साथ ही साथ मनोरंजन का भी, जानकारियाँ जो आपके करियर से जुड़ी होती हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है भारत के स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न कंपनियां, इसके अंतर्गत विकसित भारत की ओर युवाओं के बढ़ते कदम। इस विषय पर आज होगी हमारे युवा साथियों से बातचीत। युवा साथियों, भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यही युवा शक्ति आज भारत को नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। पिछले एक दशक में भारत ने स्टार्टअप क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कभी नौकरी तलाशने वाले युवा आज नौकरी देने वाले उद्यमी बन रहे हैं। यही बदलाव नए भारत की पहचान है। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप एक ऐसी नई कंपनी होती है जो किसी समस्या का नया समाधान लेकर आती है। इसका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं, बल्कि नवाचार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सरल बनाना होता है। जैसे ऑनलाइन भोजन मंगवाने की सुविधा, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कृषि तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI, ये सभी क्षेत्र स्टार्टअप की वजह से तेजी से विकसित हुए हैं। युवा साथियों, कुछ वर्षों पहले तक अमेरिका और चीन को स्टार्टअप की दुनिया का केंद्र माना जाता था, लेकिन आज भारत भी विश्व के प्रमुख स्टार्टअप देशों में शामिल हो चुका है। देश में हजारों मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत हैं। ये स्टार्टअप केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के युवा भी अपने नए विचारों के साथ स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। युवा साथियों, बात करें यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, तो जब किसी निजी कंपनी का मूल्यांकन $1 अरब से अधिक हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले तक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां गिनी चुनी थी, लेकिन आज भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों वाला देश बन चुका है। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि दुनिया भारतीय युवाओं के विचारों और क्षमताओं पर विश्वास कर रही है। आज भारत में अनेकों यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाया है और लाखों रोजगार भी पैदा किए हैं। युवा साथियों, 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य था युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और निवेश आकर्षित करना। इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप

शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। आज विकसित भारत की कल्पना बिना स्टार्टअप के संभव नहीं है। जब कोई युवा नया व्यवसाय शुरू करता है तो वह स्वयं रोजगार प्राप्त करता है, दूसरों को रोजगार देता है, कर राजस्व बढ़ाता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि स्टार्टअप को आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। युवा साथियों, इसी पर आगे बातचीत और होगी, लेकिन यहाँ पर क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक ले लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, तो एक म्यूजिकल ब्रेक यहाँ लेते हैं, एक प्यारा सा गीत यहाँ सुनते हैं और आगे की जानकारी इस गीत के बाद साझा करेंगे आपसे।

पलक को एड जिंगल गाने के ऑफर पहले भी मिलते रहे थे, पर वो ऐसे ऑफर ठुकराती रही है क्योंकि पलक सिर्फ बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहती थी, पर इस वक्त उसके कानों में सिर्फ विनीत के शब्द गूंज रहे थे, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। पलक ने यह ठान लिया था।

इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युव मंच में। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में। युवा साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के बारे में। युवा साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने स्टार्टअप को एक नई शक्ति प्रदान की है। आज ऑनलाइन भुगतान सामान्य हो चुका है, UPI ने डिजिटल लेन देन को आसान बनाया है, इंटरनेट गांव तक पहुंच चुका है, ई कॉमर्स तेजी से बढ़ा है। इन सुविधाओं के कारण छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें साकार करने का हौसला भी पा रहे हैं। आज स्टार्टअप शुरू करने के लिए केवल बड़ी पूंजी ही जरूरी नहीं है। यदि आपके पास एक अच्छा विचार है तो आप कोई मोबाइल ऐप बना सकते हैं, इंटरनेट पर आधारित व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा मंच बना सकते हैं, कृषि तकनीक से जुड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। युवा साथियों, कृषि क्षेत्र में भी अच्छा स्टार्टअप आज देखने को मिल रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। आज कई युवा कृषि क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। वे किसानों को मौसम की जानकारी, बाजार भाव, आधुनिक खेती तकनीक, ड्रोन तकनीक, जैविक खेती जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और कृषि अधिक लाभदायक बन रही है। आज महिलाएं भी स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा पा रही हैं। महिला फैशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा साथियों, पहले माना जाता था कि स्टार्टअप केवल महानगरों में ही सफल हो सकते हैं, लेकिन आज ग्रामीण भारत के युवा भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। गाँव में डेयरी आधारित व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री जैसे कई नए अवसर विकसित हो रहे हैं। युवा साथियों, और यदि कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, जैसे आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए, धैर्य की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसका नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, नई चीजें सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जोखिम उठाने का साहस भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें टीम भावना भी होनी चाहिए। इन आधारों पर हमारे युवा एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। युवा साथियों, हर सफलता के साथ चुनौतियां भी होती हैं। स्टार्टअप को भी कई बार पूंजी की कमी, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी चुनौतियां, बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों से सीखते हैं वही आगे चलकर सफल उद्यमी बनते हैं। युवा साथियों, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे विचार से शुरू होता है। किसी समय एक छोटे कमरे से शुरू हुई कंपनियां आज अरबों डॉलर की कंपनियां बन चुकी हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई नया विचार है तो उसे महत्व जरूर दें। असफलता से बिल्कुल मत डरिए। याद रखिए कि ये सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। आगे बढ़ते रहने का साहस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। नवाचार करेंगे युवा, नए उद्योग स्थापित करेंगे युवा, रोजगार पैदा करेंगे हमारे युवा, तकनीक विकसित करेंगे युवा, अर्थात विकसित भारत का सपना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा से ही पूरा होगा। भारत की 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां केवल व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास, प्रतिभा और नवाचार की कहानी है। आज आवश्यकता है कि युवा केवल नौकरी पाने का सपना ना देखें, बल्कि रोजगार देने वाले बने, नए विचारों को अपनाएं, तकनीक का उपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बातें अभी और हैं युवा साथियों, लेकिन यहाँ पर एक

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

जी युवा साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम युव मंच में। और युवा साथियों, अब कार्यक्रम में बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास शेष है, तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज का समय अवसरों का समय है। ये वह दौर है जहां एक छोटा सा विचार भी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। क्या खूब कहा है किसी ने कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। युवा साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसका मतलब है कि देश का वर्तमान भी युवा है और भविष्य भी युवा है। इसलिए ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपने ज्ञान कौशल और सकारात्मक सोच से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। युवा साथियों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती, बल्कि आपका साहस और आपका संघर्ष आपकी पहचान बनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, सुविधाएं कम है, या हम किसी छोटे शहर या गांव से आते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। यदि आपके पास सीखने की लगन और आगे बढ़ने का जज्बा है तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। असफलता से कभी मत डरिए। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता का सामना नहीं किया, उसने कभी कुछ नया पाने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। आज जिन लोगों को हम सफल उद्यमी, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या नेता के रूप में देखते हैं, उन्होंने भी संघर्षों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से नज़र नहीं हटाई। यही उनकी सफलता का रहस्य है। युवा दोस्तों, अपने समय का सही सदुपयोग करें, नई चीज़ें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें, किताबें पढ़ें, तकनीक को समझें और अपने सपनों को बड़ा बनाएं, क्योंकि बड़े सपने देखने वाले ही बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। अंत में युवा साथियों, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि सूरज की तरह आप चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना भी आपको पड़ेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, निरंतर सीखते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। युवा साथियों, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी कार्य करेंगे, क्योंकि एक जागरूक और सक्षम युवा ही एक विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। तो युवा साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब हमारे कार्यक्रम का समय भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, तो लेते हैं आपसे इजाज़त इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम

0: ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला

0: में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरा किए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
1: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को रैत कोहला बल्ला सड़क की टारिंग का कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पठानिया ने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ इस सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नवनिर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नवनिर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
2: की डेट मांग रहे हैं, जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के पहले चरण के छठे दिन किन्नौर जिला के प्रतिभागियों ने भारत तिब्बत सीमा के उच्चतम क्षेत्र शिपकिला का दौरा किया। ये दौरा सीमांत क्षेत्रों के प्रति इन युवाओं में जागरूकता, राष्ट्र भावना और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओ स्वागत है आप सभी का आज के सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के झूमते तराने लेकर हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती आपके साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आप सभी बने रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण व कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी को और कार्यक्रम चल रहा है सफ़र सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम में समय है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अर्जुन का ये गीत सुना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं अरमान फिल्म से। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम व साथियों की।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: तीर छिड़काव जी ऐसे हाँ कर ही देना।
1: कने हूँ अगले रोग की गलबात करूँ ना तो सह जी फ्यूजेरियम बिल्ट कने ये जड़ा रोग है ना अगर जे ये हाँ फसल च लग गया हो तो पता क्या होंगे भी जो जो पौधे होंगे ना सह
0: हाँ
1: अचानक ही मुरझाई जाते भी है कने सुकना लगी पाते भी है
0: अच्छा
1: कने जो पौधे का तना होंगे ना तो इसका अंदरला भाग जो होंगे ना सह पूरा हो जाता भी आ कने फिर तो जो पौधे का तना ही जो सुकी जाना पूरा हो जाना तो भी फसल कुती तो होनी भी
0: बिल्कुल ठीक
1: कने
0: गलाया।
1: एड़े लक्षण सूझन तो समझी लेना फ्यूजेरियम बिल्ट रोग जैसे लगीदा भी आ इजो उकठा रोग भी बोलते भी है।
0: हाँ भाई दिख ना भी अलग अलग बीमारियां अलग अलग है ना। तो दिख जिया जी आंदी फसल ही से खराब लगती होना तो तीस चाह जो जी आस है तीदी पहचान करी ने तीदा उपचार जी ऐसे करी लेना चाहिए है।
1: लाज भी लग गया इसदा लाज ये आ कि खेतरा भी चाहे जो फसल चक्कर जैसे अपनाना चाहिए ना कने बीज उपचार ताए कारवेंडा जिम जैसे तिहा दा इस्तेमाल करना ता फिर इस रोग ते जैसे निजात मिलनी।
0: अच्छा भाई दिख मंगला गल ए जिया जी अहां दी फसल ही अहां एक बारी बाई देन कने फिर तिथि फसला लेने ही जान ना तसे फसल आसन जो नहीं मिलनी है केर
1: तती
0: फेर कर दिया रहना चाहिंदा देख रेख जी ऐसे कर दे रहना चाहिंदा। उन हां गल कर मुझे एक रोग दी ता ए रोग जी है वायरस जनित रोग आ इस जो एक सफेद रंगा दी मक्खी हुंदी से फैलांदी है ई कने
1: अच्छा
0: इस जेडी जी पत्तियां ई से पीली जी से हो जांदी कने धब्बेदार जी ऐसे हो जांदी सिकड़ी आंदी है ई ता इस जी ऐसे असन जो जेडी जी आंदे रोग ग्रसित पौधे हुंदे तिना जो उखाड़ी देना चाहिंदा
1: कने यह सफेद मक्खिया दा निपटारा करने ताई पता क्या करना इमिडाक्लोप्रीड लेनी अद्धा मिलीमीटर कने से प्रति लीटर पानी विच कोली ने क्या करना तिहा दा छिड़काव करी देना भी आ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बोबो देख मंगला बोबो अहाँ ए गला दे यान कि जेडी जी अहाँ दे फसल आई तिना जो कोई रोग लगी दे या है तीदा अहाँ जो निपटारा जी ऐसे टाइमा रेंदे करी लेना चाहिए है। जियां जी चून लाशिता रोग दी गल करन ता इस च फफूंद दे कारण जी है जेडे पत्ते होंदे तने होंदे या फिरी कोई भी और भाग हो गया रसीले भाग जी होंदे तिस च सफेद आटे हाई जी ऐसे धब्बे बनी आंदे हैं कने फल जी ऐसे फिरी नहीं हो पाता है होंदा भी है तो है बिल्कुल
1: सरोंदा नहीं है
0: सरोंदा
1: भाई
0: नहीं
1: वो
0: ऐसे
1: छोटा दे रही अंदा
0: कने इस दे ताई जी ऐसे आहां जो कैराथेन जी ऐसे 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी च मलाई करने जी ऐसे 2-3 बारी 10 दिनों दे अंतराल च तीदा छिड़काव जी ऐसे करी देना चाहिंदा ही है कने तिस ते आहां फायदा जी ऐसे ले सकदे ही हैं।
1: हाँ भाई इससे थोड़ी जी फरामी पई जानी भी कने मैं जे एंथ्रेक्नोज की गल करिए ना तबे इस रोग की पछाणी कि पत्तियां कने फलों पर जैसे धब्बे बनना लगी पौंदे भी कने इसका इलाज ये या वे मैनकोजैब एंडोफिल M45 लेनी या फिर हैक्सा कैप इन्हों का छिड़काव कर देना कने 15 दिनों के बाद जैसे पीरी कर देना अगर जो फर्क नहीं पौता तो दिख भी अगर इस तरीके का कोई रोग लग गया हो तो भी हाँ जो इस तरीके ने इलाज पुआ जैसे करना चाहिए कने सार ते वधिया गल यही कि अगर जैसे जैविक तरीके ने कोई काम कार कर दे इन्हों रोगों पर नियंत्रण कर देना तो और भी खरी गल ही।
0: बिल्कुल मंगला बोबो दिख रोग दी पहचान करी कन्ने तिना दा उपचार करी कन्ने जी ऐसे अहां अपनी फसल च पुआजा अच्छा ले सकदे कन्ने दिन दुगनी रात चौगनी जी ऐसे तरक्की करी सकदे ही हैं।
1: बिल्कुल तो भाई ये तो जानकारी हुई कि भाई जेड़ जे कद्दू वर्गी सब्जी होंगी तिना बिच रोग लगी आन तो किए दिखे अहम जो तिना निपटारा करना चाहिए कने उन कार्यक्रम बिच टाइम हो दा एक लोक गीता दा
0: जी तो हम एक लोक गीत
1: जी।

0: किसान कने बागवान भाई बहनों होना हा देनी हमीरपुर सब्जी मंडी ते प्राप्त सब्जियां कने फलां दे थोक भाव दी जानकारी। ता सबसे पहले आलू रहे 10 ते 12 रुपये प्रति किलो, पहाड़ी आलू रहा 14 ते 16 रुपये प्रति किलो, प्याज रहा 24 रुपये, गोभी रही 70 ते 75 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च रही 45 ते 50 रुपये प्रति किलो, घिया रहा 30 ते 40 रुपये प्रति किलो, भिंडी रही 30 ते 35 रुपये, टिंडा रहा 30 रुपये, करेला रहा 30 ते 35 रुपये प्रति किलो, टमाटर रहे 30 ते 40 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्चा रही 40 ते 45 रुपये प्रति किलो, नींबू 70 रुपये प्रति किलो, खीरा रहा 25 ते 40 रुपये प्रति किलो, बैंगन रहे 30 रुपये प्रति किलो, अदरक रहा 180 रुपये प्रति किलो, लसन रहा 140 ते 150 रुपये प्रति किलो, फ्रासबीन रही 120 रुपये प्रति किलो, कने कद्दू रहा 20 रुपये प्रति किलो, केला रहा 500 ते 550 रुपये प्रति डब्बा, अनार 170 ते 210 रुपये प्रति किलो, पपीता 50 रुपये प्रति किलो, कीवी रहा 1400 ते 1600 रुपये प्रति डब्बा, माल्टा रहा 160 ते 180 रुपये प्रति किलो, तरबूज रहा 15 ते 16 रुपये प्रति किलो, खरबूजा रहा 25 ते 45 रुपये प्रति किलो, आंब सफेदा रहा 70 ते 75 रुपये प्रति किलो, आंब दशहरी रहा 50 ते 60 रुपये प्रति किलो, पलम रहे 140 रुपये प्रति किलो, खुमानी रहा 110 ते 120 रुपये प्रति किलो, लीची रही 130 ते 140 रुपये प्रति किलो, चेरी रही 250 ते 280 रुपये प्रति किलो, मशरूम रहे 30 ते 40 रुपये रा एक पैकेट। ता किसान कने बागवान भाई बहनों ए थी हमीरपुर सब्जी मंडी ते प्राप्त।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी का, ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है।

0: और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए यह आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैनजी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था, सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पांख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर काकी श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जा करके आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है। का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: प्रादेशिक समाचार डीटीएच।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न

0: अर्श के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में इस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
3: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
2: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव नतीजे प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष का स्पष्ट सबूत है। बिंदल ने आज शिमला में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि जनता विश्वास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी है। बिंदल ने यह भी कहा कि नड्डा के प्रदेश दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह अतुलनीय और भारत के पुनरुत्थान का स्वर्ण काल रहा है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री

0: छात्री 12 साल की अवधि पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिलने से वर्षों से रुके हुए काम संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली भी की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चरागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल एट द रेट AIR न्यूज _ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिहुंता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकास खंड बसंतपुर में आयोजित 3 दिवसीय आपदा रक्षक कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी अमित टुटेजा ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सामुदायिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नव निर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नव निर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
1: की डेट मांग रहे हैं, जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है कि विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की अनुपस्थिति टीम को खलेगी। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर भी है। उन्होंने कहा कि आगामी विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी में अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज कांग्रेस के 5वें स्तंभ कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जंटा ने शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभ्रा जंटा ने कहा कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया में सक्रिय युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है।
2: ऐसे युवाओं को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर आम जन की आवाज और आम जन के मुद्दों को रखा है, उन लोगों को अपने साथ या फिर मैं ये कहूँ कि उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ नाहन में, तो ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम जो है भारतीय युवा कांग्रेस ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लॉन्च कर रहा है, जो निडरता के साथ, निर्भयता के साथ असली मुद्दों को जो है ग्रास रूट लेवल पर उठाती आई है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान सोलन जिला के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने अगले दो दिन तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रखने की संभावना जताई है।
3: हिमाचल प्रदेश में WD कल 11 जून से हुआ है और ये जो है रुक रुक के इसका असर हमें 13 जून तक पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी मिड हिल्स लोअर निचले मैदानी इलाकों में दो दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। हवाओं की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज के टाइम पे 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है इन सभी जिलों में। सिरमौर जिला, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है 12 जून को, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिले में ऑरेंज जारी किया हुआ है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्योहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। उससे पहले आइए सुनते हैं ये विज्ञापन।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
9: अरे भाई, खुशी तो होगी।
10: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है। और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
11: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
12: सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं। चर्चा के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवेंद्र कुमार, जो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर कम नोडल अफसर हैं, और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती जी, जो नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर भारती रेबीज, स्नेक बाइट वो उपेक्षित ट्रॉपिकल डिजीज के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
13: धन्यवाद जी।
12: सबसे पहले देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना है क्या, ये कब शुरू हुई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
13: देखिए अर्चना जी, इस योजना के बारे में बताने से पहले मैं वर्ष 2008-09 में जाना चाहूंगा। जो योजना है हमारी 2008-09 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि सरकार को ये लगा हमारे पास जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, इतनी हमारी 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कि जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा सके। वैसे जो हमारी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज वाली है, प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसीज है, वो बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता है गरीब आदमियों के पास कि वो जाके प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसी को वो ले पाए या 10,000-20,000 का वो प्रीमियम दे पाए। तो भारत सरकार ने 2008-09 में एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उस योजना में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष एक परिवार को दाखिल होने पर 30,000 रुपए तक का सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया, और उसमें सबसे पहले वो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारे उनको लेके आए, उसके बाद मनरेगा वर्कर जिन्होंने कम से कम 15 दिन काम किया वो मनरेगा के अंदर में उनको लेके आए, फिर इसमें रेड़ी फड़ी वाले को इसमें शामिल किया उन्होंने, रेड पिकर, रिक्शा पुलर जो हमारे हैं उनको शामिल किया, इस तरह कुछ कैटेगरीज उन्होंने टैक्सी ड्राइवर वगैरह को इसमें शामिल किया। तो आते आते वर्ष 2014 के बाद 18-19 आ गया, और हुआ ये कि क्योंकि 30,000 रुपया जो था एक परिवार को एक साल में 2008-09 में शुरू भारत सरकार ने किया था, तो 30,000 रुपया एक परिवार के लिए कम लगने लगा। भारत सरकार ने फिर ये निर्णय लिया 2018 में आके कि क्यों ना इस जो बीमा कवर है, जो सुरक्षा कवर है, उसको बढ़ा के हम कुछ और ज्यादा करें। तो इस संदर्भ में जो है भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, और एक परिवार को प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का सुरक्षा कवरेज में उपलब्ध करवाया अस्पताल में दाखिल होने पर। और 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को पूरे भारत में शुरू किया, और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को 23 सितंबर 2018 को आरंभ किया गया। वैसे ये देखा गया है जो भारत सरकार का जो मानना है इस योजना को शुरू करने के पीछे, कि एक गरीब इंसान अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल में दिखाने के लिए नहीं ले जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिहाड़ीदार है जो कि दोपहर को कमाता है और शाम को जाके अपने परिवार का पेट पालता है, उसको खिलाता है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में लेके नहीं जाता है। कारण क्या है? डर। उसको सबसे पहला कारण ये होता है कि उसको ये डर रहेगा कि पता नहीं कौन सी बीमारी निकलेगी या डॉक्टर कौन सा, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, और उस दिन वो अपने परिवार को कुछ खिला भी पाएगा कि नहीं जब वो दिहाड़ी नहीं लगा पाएगा वो गरीब आदमी। और भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने इस दर्द को समझा, तब वो इस योजना को लेके आए कि कम से कम उसके पास ये अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है उस परिवार के पास, तो उसको अस्पताल में जाने का डर नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, और इसका इलाज जो है निशुल्क जो है चयनित अस्पतालों में किया जाता है। तो ये कारण था इस योजना को लागू करने का, जो भारत के गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए।
12: तो इसमें जो एक आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, क्या जो पात्र व्यक्ति है उनको उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, कोई फीस है इसकी?
13: जी नहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने के लिए किसी तरह की कोई फीस का भुगतान इसमें नहीं करना पड़ता है।
12: जी देवेंद्र जी, तो इस योजना के पात्र कौन लोग होते हैं और पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई आय की सीमा भी है?
13: इस योजना के अंतर्गत देखिए हमारा जो सेंसस का जो सर्वे होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो सर्वे हुआ था, उसमें कुछ डेप्रीवेशन क्राइटेरिया था। जो भी अभी अभी सेंसस का सर्वे चला हुआ है, तो उस डेप्रीवेशन क्राइटेरिया के आधार पर D1 से लेकर D7 तक जो डेप्रीवेशन क्राइटेरिया है, उसमें D6 को भारत सरकार ने नहीं लिया है। जैसे किसी का कच्चा घर है, किसी के पास घर नहीं है, ये D1 क्राइटेरिया में आते हैं। डी डेप्रीवेशन का जो 2 क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर परिवार में 18 से 59 साल का कोई एडल्ट मेंबर नहीं है, मान लीजिए 18 से कम साल के बच्चे हैं। डेप्रीवेशन 3 क्राइटेरिया जो है, उसमें फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड है, मतलब परिवार का मुखिया जो एक महिला है, और 16 से 59 साल का उसमें कोई भी मेल परिवार का सदस्य नहीं है। D4 का जो हमारा क्राइटेरिया है, अगर हम कहें विशेष पर्सन या स्पेशली एबल्ड अगर हम बात करते हैं, अगर परिवार का मुखिया स्पेशली एबल्ड है उसमें और वो कमाने के लायक नहीं है। D5 जो क्राइटेरिया है हमारा, वो SC/ST हाउस होल्ड से रिलेटेड है। D6 क्राइटेरिया वैसे लिटरेसी रेट से रिलेटेड है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। और D7 का जो क्राइटेरिया, जो हमारा मेजर जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, जैसे दिहाड़ीदार की हम बात करते हैं, तो डेप्रीवेशन का 7 क्राइटेरिया इसमें ये रखा गया है। और इस योजना की जब दिशा निर्देश बनाए जा रहे थे, गाइडलाइन बनाए जा रहे थे, तो SECC 11 को भारत सरकार ने लिया, लेकिन कुछ राज्यों में उस दौरान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही थी। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया इसमें कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत लाभार्थी हैं, चयनित लोग हैं, उनको भी इसमें डेप्रीवेशन एसईसीसी 11 के साथ साथ उनको बीच में डाला जाए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो एसईसीसी 11 का जो डेप्रीवेशन क्राइटेरिया है प्लस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 2014-15 के जो लाभार्थी थे उनको भी इस योजना में डाला गया।
12: तो इसकी पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है?
13: इसमें पात्रता के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास माननीय प्रधानमंत्री जी से आया हुआ पत्र है जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेप्रीवेशन क्राइटेरिया के बेस पे है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का 2014-15 का जो कार्ड है अगर किसी परिवार में वो है तो वो इस योजना के लिए पात्र है। इसमें मैं एक और बात बनाना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत जैसे पात्रता की अपने बात की

0: कार्ड कैसे बनाया जाता है। जब योजना को शुरू किया गया था तो इसमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भारत सरकार ने एक बनाया था, BIS जिसको हम कहते हैं, 1.0 था वो। उसके अंतर्गत किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाके या पंजीकृत अस्पताल में जाके व्यक्ति अपनी पहचान बता के कार्ड बनवा सकता था, और उसमें व्यक्ति के नाम के आधार पे, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल हम कहते हैं, जिला गांव का नाम, उसके आधार पे, राशन कार्ड के आधार पे और मोबाइल नंबर के आधार पे अपने वो आंकड़े डिटेल सर्च करवा सकता था, वहां पे कार्ड बनवा सकता था। लेकिन भारत सरकार ने 2 वर्ष पहले बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 2.0 लागू कर दिया है। अब उसके आधार पे आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आधार नंबर डाल के भी कार्ड बनवाया जा सकता है, वो व्यक्ति खुद भी बनवा सकता है। अगर उसके परिवार के सदस्यों का किसी का कार्ड और पहले से ही बना है तो व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड करके आइडेंटिफिकेशन डाल के EKYC करवा के अपना कार्ड बनवा सकता है। और अगर उसमें कार्ड नहीं बनाए, जो भी नजदीकी लोक मित्र केंद्र है या आशा के थ्रू या नजदीकी अस्पताल में जाके वो कार्ड बनवा सकता है।
1: तो उसका सरलीकरण जो है भारत सरकार ने किया है, जो
0: जी
1: कार्ड बनवाना होता है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो है वो कहाँ कहाँ अपना इलाज करा सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, और क्या अगर कोई अस्पताल में एडमिट होता है तभी इसका बेनिफिट मिलता है?
0: इस योजना के अंतर्गत 1949 तरह की स्पेशलिटीज के अंदर बीमारियां कवर है, जिसमें की 3227 तरह की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं कवर है, और इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट से लेके सर्जरी तक सारी बीमारियां इसमें कवर की गई है। फिर भी अगर कोई सर्जरी इसमें कवर नहीं होती है इस योजना के अंतर्गत, तो भारत सरकार ने अनस्पेसिफाइड करके एक बीमारी का नाम दिया है, उसमें वो अस्पताल अपनी डिटेल डाल सकता है पेशेंट का इलाज करने के लिए, उसमें वो कवर किया जा सकता है। तो जिस भी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने योजना के अंतर्गत किसी अस्पताल को पंजीकृत किया है, वहां पर जाके पूरे भारत का लाभार्थी, पूरे भारत से कहीं से भी, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का लाभार्थी कहीं पे भी जाके पंजीकृत अस्पताल में, चाहे वो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है या भारत सरकार का अस्पताल है, वहां पे जाके वो इलाज करवा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने अस्पताल इस योजना के अंतर्गत भारत में पंजीकृत है, तो लगभग 29,000 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में पंजीकृत है, जिसमें से की लगभग 12,500 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं और लगभग 16,000 के करीब जो अस्पताल है वो सरकारी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 250 के करीब जो अस्पताल है वो एम्स जैसे हम मिलाते हैं, या भारत सरकार के जो अस्पताल है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो अस्पताल है, वो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है।
1: तो अगर कोई व्यक्ति पहले सरकारी अस्पताल में जाता है और फिर जैसे रेफर करने का एक प्रोसीजर रहता है, तो उसके बाद वो प्राइवेट में जा सकता है उसी कार्ड?
0: और दूसरा, आपने जो अभी रेफरल की मुझसे बात कही, तो इस योजना के अंतर्गत क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि जो लाभार्थी है वो किसी भी अस्पताल में जाने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें किसी तरह का रेफरल की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो किसी भी पंजीकृत निजी या सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा, वहाँ पे जाके वो इलाज करवा सकता है।
1: नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक अस्पताल में जाता है ये सोच के कि मेरा पूरा इलाज वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स को लगता है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इन्हें किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए, निजी या सरकारी, तो ऐसी स्थिति में उसको वो सुविधा मिलेगी?
0: बिल्कुल मिलेगी जी, किसी भी अस्पताल में जा सकता है। अगर उसको रेफर भी करते हैं तो वहाँ पे जाके वो पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वो पंजीकृत होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके उसको वो सुविधा मिलेगी।
1: तो ये आपकी वेबसाइट जो आयुष्मान भारत की है उस पे पंजीकृत अस्पतालों का ब्यौरा रहता होगा?
0: जी, उसमें पंजीकृत अस्पतालों का पूरा ब्यौरा रहता है और किस स्पेशलिटी के लिए वो अस्पताल पंजीकृत है उसके साथ उसका ब्यौरा रहता है, कि अगर कोई व्यक्ति उस वेबसाइट पे जाके या आयुष्मान ऐप पे भी जाके भी अगर वो अस्पतालों की सूची देखना चाहता है तो वहाँ से भी वो सूची देख सकता है।
1: जी देवेंद्र जी, एक विषय जो हिमाचल जैसे ग्रामीण राज्य में बहुत महत्व रखता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो है एनिमल राइट्स व सर्पदंश। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी रहते हैं, तो क्या इस तरह की इमरजेंसीज भी आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड है?
0: इस योजना के अंतर्गत लगभग 3227 प्रक्रियाएं शामिल की गई है, तो उसमें सभी कुछ शामिल किया गया है, एनिमल बाइट्स, डॉग बाइट्स भी, और सर्पदंश की जो आप बात कर रहे हैं ये भी इस योजना में शामिल किया गया। अगर किसी को ये समस्या आ जाती है, कोई दुर्घटनावश, अगर तो हम दुर्घटना ही कहेंगे ना, अगर किसी को डॉग काट दे या सांप किसी को काट दे, अगर वो अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज जो है योजना के अंतर्गत निःशुल्क करने का इसमें प्रावधान।
1: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में एनिमल बाइट्स, खासकर डॉग बाइट्स और स्नेक बाइट की समस्या कितनी गहन है?
2: देखिए, हमारा जैसे कहा कि 80% जो भाग है वो रूरल एरिया में है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, और गांव में हमारे एनिमल बाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डॉग बाइट के अलावा हमारे पास लंगूर बाइट या दूसरे जो जंगली एनिमल है, चीता का अटैक जो है या भालू का अटैक जो है, वो हमारे गाँव में होता है, तो ये एक बहुत ही भयावह समस्या है एनिमल बाइट। और सिमिलरली स्नेक बाइट भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, गांव में रहने की वजह से, जंगली एरिया होने की वजह से स्नेक बाइट भी बहुत ज्यादा हिमाचल में प्रेवलेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ समय पहले तक, मान लो कुछ साल पहले तक, ये दो समस्याएं जो थी वो किसी के, कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का इसमें कोई प्लान नहीं था, तो लोग अपने भरोसे पे थे और ज्यादातर लोग जो है खुद इलाज कराते थे। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 4-5 सालों से, भारत सरकार ने इन दोनों समस्याओं के लिए नेशनल प्रोग्राम बनाए। नेशनल प्रोग्राम बनाने से इसमें कई चीजें जुड़ गई, इसकी मॉनिटरिंग शुरू होगी, इसमें ट्रेनिंग शुरू होगी, इसमें दवाइयां आनी शुरू होगी, इसमें मुफ्त इलाज शुरू हो गया। तो ये जो दो समस्याओं के लिए भारत सरकार ने जो दो नेशनल प्रोग्राम बना दिए, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट, तो ये दो बड़े प्रोग्राम जो हैं अभी पिछले 5 सालों में जो हैं रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, और उससे जो है लाखों लोगों का, जो गांव में रहते हैं खास करके, उनका भला हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले जो हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे कि हमारी एनिमल बाइट से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, 20,000 के करीब मौतें होती हैं, और स्नेक बाइट से भारतवर्ष में 50,000 से ज्यादा जो भारत में जो है मृत्यु दर है स्नेक बाइट से, तो वो जो एक टैग था कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है एनिमल बाइट और स्नेक बाइट से भारत में होती है, तो वो दर बड़ी शार्पली कम हुई है। और जब ये दो नेशनल सर्वे हुए हैं उसमें से हम देखें तो 20,000 से हम एनिमल बाइट में डेथ जो है लगभग 6-6.5 हज़ार के करीब आई है, और इसी तरह से स्नेक बाइट की 50,000 जो डेथ होती है उनकी भी लगभग इतनी 6-7 हज़ार के आसपास जो है, इस वक्त जो सर्वे कराए हैं आईसीएमआर ने उसमें डेथ जो है 3 गुना कम हुई है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा उल्लेखनीय काम जो साइलेंटली हुआ है, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों ने नहीं दिया है, और पूरे वर्ल्ड के भी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस पे अभी तक ये इसको अप्रिशिएट इतनी ज्यादा नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारा एक टैग था कि भारत जो है वो एनिमल बाइट की डेथ में और स्नेक बाइट की डेथ में विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो वो टैग शायद इन योजनाओं की वजह से कम हो जाए।
1: देवेंद्र जी, माइग्रेंट वर्कर्स और वृद्ध लोग, माइग्रेंट वर्कर्स की भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, तो वो अपना कार्ड कहाँ बनवाएं, और क्या वृद्ध लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं इस बेनिफिट के लिए?
0: इस योजना के अंतर्गत एक सुविधा ये दी गई है कि माइग्रेंट लेबरर हो या वर्कर हो जिसका नाम SECC 11 जो डेटाबेस है उसके हिसाब से, या RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अगर उसका नाम भारत सरकार के डेटाबेस में उपलब्ध है, वहां पे पाया जाता है, तो व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पे भी जाके कार्ड बनवा सकता है और कहीं पे भी जाके वो इलाज ले सकता है। दूसरा, आपने वृद्ध व्यक्तियों के लिए बात कही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में एक निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा जिसमें कि 70 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल, इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं और कार्ड वो बनवा सकते हैं उस योजना के अंतर्गत। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे हिमाचल में लगभग 1,05,000 ऐसे 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाया।
1: जी, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितने परिवार आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?
0: हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% सेचुरेशन, हम इसको वर्ड बोलते हैं, कि जो टारगेट भारत सरकार ने दिया प्रदेश को कि इतने परिवारों को आपको योजना में शामिल करना है, तो हिमाचल प्रदेश ने परिवारों और व्यक्तिगत, परिवार के अंदर व्यक्ति होते हैं, तो लगभग हमारा यहाँ टारगेट था कि 14,66,000 के करीब व्यक्ति थे जो इस योजना के अंतर्गत जिनको पंजीकृत करना था, तो उनका हिमाचल प्रदेश ने 14,66,000 से ज्यादा लोगों को इसमें EKYC कर दिया है, 100% इसमें लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है। और मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि 2024-25 में ही भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया था कि जो आशा है हमारी स्वास्थ्य विभाग की, आंगनवाड़ी वर्कर है और आंगनवाड़ी हेल्पर है, इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए, तो आशा 6,711 आशाओं ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है, 18,128 आंगनवाड़ी वर्कर ने बनाया है और 22,167 आंगनवाड़ी हेल्पर ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया, तो अलग अलग कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारे CAPF के अंतर्गत जो आते हैं हमारे सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्सेज है उसके अंतर्गत, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में लाभ दिया जाए, तो भारत सरकार ने इनको भी आयुष्मान भारत योजना में चयनित कर लिया है।
1: तो हिमाचल में तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है।
0: हाँ जी।
1: कितना खर्च अभी तक भारत सरकार इस योजना पे हिमाचल प्रदेश में कर चुकी है?
0: हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसमें जो खर्चा होता है हिमाचल सरकार का और भारत सरकार का मिला के होता है, तो अभी तक जो इलाज जो लोगों ने लिया है लगभग 600 करोड़ का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर जो पंजीकृत अस्पतालों में वो ले लिया है इस योजना के अंतर्गत
1: अभी तक 2018 के बाद।
0: हाँ जी।
1: तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आयुष्मान भारत लागू करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे रास्तों की दिक्कत है, यहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए जो आती थी वो थी EKYC करवाना।
1: जी
0: कि कोई भी लाभार्थी है जिस व्यक्ति का डेटाबेस में नाम है। अगर हम बात करते 2022 तक की, जो कोविड का भी टाइम था, कोविड के बाद 22-23 की अगर हम बात करते, तो हमारी जो मैंने सेचुरेशन की बात करी, हम 68% सेचुरेशन पे थे। जो हमारा टारगेट था उससे लगभग 68% लोगों को हमने इस योजना में कवर किया था। 22 के बाद थोड़ा अभियान स्तर पे ये प्रदेश में किया गया, जब प्रदेश में सरकार बदली यहाँ पे, तो उसके बाद अभियान स्तर पर यहाँ पे काम

0: किया गया कि सभी लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो 23-24 में जो है घर घर जाके लोगों को आइडेंटिफाई करके लोगों को हमने भेजा और वहां पे उनका EKYC करवाया। तो थोड़ी इंटरनेट की भी समस्या आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति किन्नौर जो हमारे ट्राइबल एरिया है, चंबा के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था, लेकिन वो टीमें घर घर गई, उन्होंने लोगों के कार्ड बनवाए और 2025 में हम ये सैचुरेशन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हम ये सैचुरेशन अचीव कर पाए कि हमने 100% लोगों को इसमें आयुष्मान भारत में कार्ड दिया। दूसरी जो प्रदेश को जो समस्या आ रही है, जो हम बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं
1: जी।
0: इस योजना के अंतर्गत, आपने अभी पूछा था कि कितना खर्चा भारत सरकार ने इस योजना में किया है, 90-10 भारत सरकार 90% वहन करती है, प्रदेश सरकार 10% वहन करती है। लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने प्रति परिवार एक सीलिंग लगाई है इस योजना में कि भारत सरकार प्रदेश को प्रति परिवार 1052 रुपए एक सीलिंग है जिसका 90% भारत सरकार देती है। योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि प्रदेश को भारत सरकार से लगभग 50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रदेश सरकार का जो खर्च इस योजना पे हो रहा है वो लगभग 120 करोड़ रुपया 1 अरब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष होता जा रहा है। तो भारत सरकार से केवल 50 करोड़ आ रहा है और प्रदेश सरकार से लगभग 80 से 90 करोड़, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 154 करोड़ रुपया खर्च 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत हुआ है और प्रदेश को 50 करोड़ प्राप्त हुआ है, तो लगभग 100 करोड़ प्रदेश ने अतिरिक्त इस योजना में वहन किया है।
1: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डॉग बाइट या स्नेक बाइट के मरीज खासकर मैं कहूंगी उनको टैकल कर पाती है?
2: देखिए, अब तो क्योंकि राष्ट्रीय योजनाओं की भी सपोर्ट है और नेशनल हेल्थ मिशन से भी फ्री ड्रग इनिशिएटिव की सपोर्ट है और हमारी लोकल परचेजेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है उसकी भी सपोर्ट है, तो कभी एक समय था जबकि ये दवाइयां उपलब्ध नहीं होती थी और लोग बाजार से भी खरीद नहीं पाते थे, महंगी भी होती थी। तो अब जो ऐसी स्थिति है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये दवाइयां उपलब्ध हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो डॉग बाइट है वो 10 गुना बढ़ गया है पिछले 5-7 सालों में, यानी कि यदि 10,000 डॉग बाइट होते तो अब लगभग 1 लाख के आसपास जो है एनिमल बाइट हो रहे हैं और स्नेक बाइट भी बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह कि क्योंकि दवाइयां उपलब्ध हैं, उनका उपचार उपलब्ध है, डॉक्टरों की और दूसरे पैरामेडिकल की ट्रेनिंग्स हुई हैं, आशा वर्कर की ट्रेनिंग्स हुई हैं, तो वो हमारे हिमाचल में भी वो डेथ रेट जो है वो काफी कम हुई है।
1: देवेंद्र जी, हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इतनी सुविधाएं हैं जो आयुष्मान भारत में, आपने कहा कि हम बहुत सारी बीमारियां कवर करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है हिमाचल में आयुष्मान भारत कार्ड का पूरा लाभ उठा सके?
0: इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं थी
1: जी।
0: अभी अगर हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ प्रदेश में हमारे मेडिकल कॉलेजेस में दी जा रही हैं, तो यहाँ पे सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं जो कि लोग यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है तो लाभ उठा पा रहे हैं या उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो अगर हम प्रदेश के बाहर की भी बात करते हैं तो PGI चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे जो यहाँ के हिमाचल के लोग हैं उनका सबसे ज्यादा फेथ भी PGI चंडीगढ़ पे रहता है। हमारा वैसे सबसे ज्यादा इलाज हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है इस योजना के अंतर्गत। सरकार ने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है कि लोगों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा सके। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि अस्पतालों में इलाज करने के लिए लाभार्थी को क्या करना पड़ता है, कि जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में जाएगा तो उसको कहाँ पे जाना है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत से लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए लाभार्थी को कि कहाँ पे उसको जाना है। जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में इलाज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा लगाया गया इस कार्य के लिए जो भी उनके चिकित्सक होंगे उनके पास दिखाएंगे, अगर उनको लिखा जाता है कि आपका सर्जरी होनी है। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है और उसका अल्ट्रासाउंड करवा दिया उन्होंने और चेक किया कि 20 mm का एक स्टोन निकल के आ गया उसको, तो उसकी सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवाइए। वो आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाता है और डॉक्टर के पास कोड अवेलेबल है इसका कि ये कोड इस सर्जरी का है, वो कोड उसको लिख के देगा, आरोग्य मित्र के पास वो व्यक्ति जाता है। आरोग्य मित्र के पास वो लाभार्थी जब जाता है तो आरोग्य मित्र उसकी एंट्री करेगा, उसका बायोमेट्रिक आधार से उसका EKYC मैच किया जाता है और व्यक्ति का पंजीकरण योजना के अंतर्गत कर दिया जाता है और उसके सारे कागजात जो है अपलोड कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है इसका, सारा रियल टाइम बेसिस पे है और अपलोड करने के बाद प्री ऑथोराइजेशन पैनल डॉक्टर के लॉगिन में वो चले जाता है, वो उसको चेक करेगा, उसको वो अप्रूवल दे देगा उसके बेस पे कि ट्रीटमेंट कर दिया जाए। अस्पताल के द्वारा उसका निःशुल्क इलाज कर दिया जाता है, निःशुल्क इलाज करने के बाद वो दोबारा से डिस्चार्ज पे वही आरोग्य मित्र के पास जाएगा और बायोमेट्रिक अपना अंगूठा का निशान लगाएगा और अपना डिस्चार्ज वहां से करवाएगा। साथ में वो आरोग्य मित्र उसकी क्लेम फाइल जो भी उसके OT नोट्स हैं या अलग जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है जो भी डॉक्टर ने प्रोसीजर किया है उसका 3-4 दिन वो है कि उसको जो इलाज करवाया है वो उसकी फाइल वो अपलोड कर देगा, फिर वो क्लेम के लिए भेज देगा, तो वो क्लेम पैनल डॉक्टर के पास चले जाता है, वो उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ से शिमला से SHA से उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन रहता है, लाभार्थी के कार्ड बनवाने से लेके अस्पताल में इलाज करवाने तक और अस्पताल को पैसा जाने तक सारा सिस्टम ये ऑनलाइन रहता है।
1: लेकिन हम सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनअवेयर रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, कि डिफिकल्ट एरियाज में वो रहते हैं, जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जैसे कि आपने बताया कि अस्पताल जाकर उनको क्या-क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपका क्या प्रोग्राम रहता है?
0: अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस योजना के अंतर्गत एक चीज रहती है, सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस का है वो हमारी आशा होती है, जो स्वास्थ्य विभाग की आशा होती है, उसको इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि वो घर घर जाती है सभी के पास और वो लोगों को इस योजना के बारे में बताती है कि आपकी ये योजना है। सबसे बेस्ट जो रहता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की बात अंदर। मान लीजिए मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, मैं अपना इलाज निःशुल्क करवा के आता हूँ, तो मैं अपने पड़ोसी को जरूर बताऊंगा जाके कि मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड था, मैंने अपना निःशुल्क इलाज करवाया, मुझे अस्पताल में पैसा ना लगे। तो पड़ोसी भी देखेगा कि मेरा इसमें नाम है कि नहीं है। बीएमओ लेवल्स पे जो मंथली मीटिंग्स होती हैं
1: जी
0: और पंचायत स्तर पे जो मीटिंग्स होती है, उसमें हमारे बीएमओ ऑफिस से व्यक्ति जाते हैं, जो फीमेल फीमेल हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं, आशा जाती है, वो भी पंचायतों में इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं इस योजना के बारे में। हिमाचल के जो नागरिक हैं वो बहुत अवेयर हैं इस योजना के बारे में। अगर हमारे 100% सेचुरेशन अचीव की है हिमाचल जैसे राज्य ने यहाँ पे, और इतना लोगों ने इलाज लिया है, एक पहाड़ी राज्य की बात है, 600 करोड़ पिछले 8 साल में, छोटे से राज्य के लिए इतने बड़ा इलाज लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि इतने लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसमें लाभ लिया है।
1: जी बिल्कुल, ये वाकई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन ने भी बहुत सी चुनौतियां खड़ी की हैं, खासकर हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं?
0: मुश्किलें आती है, हमें भी मुश्किलें आई थी, जो मैंने आपको बात बताई कि हमने घर घर लोगों को भेजा। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो सर्दियों का जो समय आता है, जो 6 महीने वो बर्फ से कटा रहता है, कुछ हमारा जो स्पीति का जो एरिया है वो लोग कुल्लू आ जाते हैं या रामपुर चले जाते हैं, तो हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ के कि आपका नाम आयुष्मान भारत में है, वहां पे उनके हमने कार्ड बनवाए। मुश्किलें आई हमें क्योंकि इंटरनेट की समस्या रहती है, पहाड़ी एरिया है, क्योंकि ये योजना बिल्कुल ही ऑनलाइन चलती है।
1: नहीं, लेकिन इसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपने बताया कि अस्पताल जाके भी ऑनलाइन ही सब कुछ अपलोड होता है, तो उसमें जो समय काफी बर्बाद होता है लोगों का, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या समाधान है?
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर हम बात करते हैं, डिजिटाइजेशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें की आभा मनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा रहे हैं, लगभग 65 लाख लोगों के आभा हिमाचल में चुके हैं। अभी जो समय की अगर हम बात करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारे 53 अस्पताल हैं प्रदेश के, जिसमें कि QR कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसमें आभा ऐप कितने रखी है अपने पास, उसमें QR कोड स्कैन करेगा, उसमें लाइन को लगने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर्ची यूज किया जाएगी और टोकन नंबर के थ्रू उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, इसमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी योजना चलाई जाती है तो ऑफलाइन मोड पर योजना नहीं चल सकती है। व्यक्ति के जो इलाज के कागजात है वो सारे डिजिटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इतना समय भी नहीं लगता है, बट ये आसान चीजें कर दी गई है, क्योंकि इसमें देखिए व्यक्ति का प्री ऑथराइजेशन से लेके उसका इलाज होने तक और अस्पताल को पैसा देने तक सारी चीजें ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं करना होता है। ट्रांसपेरेंसी पूरी है इस योजना के अंतर्गत की, सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही सब कुछ जाता है, जो पैसा है उस अस्पताल के बैंक अकाउंट में चला जाता है। और तीसरी मैं एक चीज और बात करता हूँ, अगर हम निजी अस्पतालों की बात करते हैं तो इनकम टैक्स क्लॉज 194J है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी निजी अस्पताल को इन योजनाओं के लिए अगर हम पैसा देते हैं तो 10% TDS काटने का, जब निजी अस्पताल को पैसा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 10% TDS कट के चला जाता है और जो 10% है वो सरकार के खाते में जमा हो जाता है।
1: जी डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉग बाइट पे जो खर्चा होता है वो तो लगभग सारे अस्पताल जो है वो फ्री में अब उपचार उसका कर रहे हैं, चाहे एंटी रेबीज वैक्सीन हो या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो गाँव में लगाई जाती है, लेकिन स्नेक बाइट पे लोगों का बहुत खर्चा होता है, और देवेंद्र जी ने जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में वो कवर्ड है, तो आपको क्या लगता है कि स्नेक बाइट विक्टिम्स जो है क्या वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं हिमाचल प्रदेश?
2: डेफिनेटली, हमने कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि कोई डॉग बाइट का विक्टिम है या एनिमल बाइट का या स्नेक बाइट का विक्टिम है, उसको कोई बड़ा ज्यादा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ा, ऐसी कोई हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट आई नहीं है। इसका मतलब यही है कि लोग जो है इन योजना का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को जो है वो मौत के मुंह से बचा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर भारती, आपको हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के एक्सपर्ट ग्रुप का भी सदस्य बनाया गया है। भारत सरकार ने विभिन्न ऐसी बीमारियां जो नेग्लेक्टेड हैं, उनकी रोकथाम और निदान के लिए क्या कदम उठाए हैं और उससे पूरे भारत में और हिमाचल में उसका क्या असर हुआ है?
2: देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले डॉग बाइट स्नेक बाइट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था, तो ना तो इन बीमारियों की कोई मॉनिटरिंग होती थी ना ही कुछ पता चलता, तो इसी तरह से जो बाकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं उसमें मान लो मलेरिया है, लिशमेनियासिस है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और रेयर सेल डिसीजेज हैं, इस तरह की जितनी भी डिसीजेज हैं उन सबके भारत सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं, और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन सब प्रोग्राम्स का जो है वो लाभ गांव तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उन सारी प्रोग्राम्स की, उन बेनिफिशियरी की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया से कितने बच्चे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो 20 से अधिक राष्ट्रीय प्रोग्राम भारत सरकार के बने हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा गांव गांव तक पहुंचाया है। और जैसे हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है या इमरजेंसी सर्विसेज, अब भारत सरकार जो है वो लॉन्च करने जा रही है सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी अप टू सीएससी लेवल तक, जबकि लक्ष्य पीएससी लेवल तक है। तो मैं समझता हूँ जो ये रोड एक्सीडेंट है और जो इस तरह की इमरजेंसीज है, ताकि गोल्डन आवर में इमरजेंसी सर्विस में लोगों को ले जाया सके और उनकी जान बचाई जा सके, तो एक बहुत एम्बिशियस जो प्रोग्राम भारत सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों के बेनिफिट के लिए चलाया है और आगे भी चला रहे हैं, दैट इज इन प्लान।
1: जी देवेंद्र जी, योजना से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जैसे कुछ लोग निश्चित रूप से करते होंगे और जिनको लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
0: भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है 1455,
1: जी
0: वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं। और एक CGRMS पोर्टल भारत सरकार के चलता है, और एक PMO पोर्टल है, PG पोर्टल है, उस पर भी वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मैं हिमाचल की अगर बात करूँ तो हिमाचल में हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए, अस्पतालों में वो नंबर फ्लैश होते हैं, अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो वो उस ग्रुप के माध्यम से हम तक अप्रोच कर सकते हैं और इमीडिएटली उसकी समस्या को हम सुलझा देते हैं। और ग्रीवेंसीज की अगर हम बात करते हैं, ग्रीवेंसीज तो आइडली वैसे नहीं आती है, ये आती है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आती है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो हम उसको रियल टाइम बेसिस पे ऑन द स्पॉट हम उसको रिजोल्व करते हैं।
1: जी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि लोगों के मन में ये डर रहता है कि जब उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनका खर्चा होगा, तो हमें लगता है कि जो आयुष्मान भारत है उसने लोगों के मन से ये डर भी खत्म किया है, और जो लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहले उठाते नहीं थे अब वो भी उठा के ले जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। तो इस दिशा में भी आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो पूरे भारत में रहा है और हमारे प्रदेश में भी खासकर रहा है।
0: जी जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, भारत सरकार ने एक और योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवे है, PM राहत योजना अभी शुरू की है। उस योजना के अंतर्गत अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क उस योजना के अंतर्गत हो रहा है।
1: जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, इस चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। देवेंद्र जी और डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य पर लोक कलाकार कमर सिंह से सपना ठाकुर की भेंट वार्ता।
4: नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी ने न केवल समाचार और विचारों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि संगीत, संस्कृति और कला को भी नई पहचान दी। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार जिन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, दिलरुबा वादन जैसी अनेक विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कमर सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: कमर सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडियो में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, कब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया?
5: हाँ, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब से समझ लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि हमारे पिताश्री ने एक रेडियो खरीद रखा था और मुझे याद है कि वो एक निप्पन कंपनी कोई जापान की थी, वो रेडियो उन्होंने खरीदा था और पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर में ही रेडियो था और उसमें कार्यक्रम जो भी आते थे वो कान में पढ़ते रहे। जब थोड़ा होश आया तो मुझे याद है कि शिमला रेडियो तो था नहीं उस जमाने में, और ये 60s की मैं बात कर रहा हूँ
4: जी।
5: तो वहाँ से एक कार्यक्रम चलता था पर्वत की गूंज, और वो पर्वत की गूंज पूरा गांव इकट्ठा होता था उस सुनने के लिए, क्योंकि हिमाचल के कार्यक्रम उसमें ज़्यादातर, उस कार्यक्रम में हिमाचल के जो लोक गीत हैं वो प्रसारित होते थे, और बस वो कान में पढ़ते रहे, क्योंकि उस जमाने में हम लोगों ने स्कूल में उर्दू 6ठी क्लास से हमको शुरू हो गई थी, तो उर्दू के, क्योंकि पिताजी हमारे उर्दू पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई उर्दू मीडियम से ही की थी, चाहे वो गणित हो, चाहे समाज हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो उर्दू उनका मीडियम था, तो उनका तलफ़ुज जो था वो बहुत अच्छा था, तो हमको बहुत अच्छा वो अट्रैक्टिव लगता था, और मेरी भी रुचि उर्दू में बहुत अच्छी थी, और 3 साल उर्दू हमने का अध्ययन किया स्कूल में 8वीं तक, उसके बाद शायद उर्दू बंद हो गई, तो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गई
4: जी।
5: स्कूल में, तो उर्दू की वजह से हमारा जो उच्चारण जो था वो कुछ कुछ एक अदबी जुबान कह लो आप, वो उस वैसा वैसा एक बनने लगा कुदरती
4: जी।
5: तो कभी कभी रेडियो से गज़लें आती थीं तो वो भी अच्छी लगी, हालांकि समझ नहीं थी इतनी उतनी, क्योंकि अरबी फारसी के शब्द तो नहीं समझ आते, लेकिन वो एक लहजा जो था वो हमारे मन को भाने लगा धीरे धीरे। फिर क्योंकि हमारे घर में पिताजी को संगीत का बड़ा शौक था, रामलीला हुआ करती थी वहाँ, तो रामलीला हुआ करती, तो उसकी वजह से हम में और भी थोड़ी रुचि उसमें होने लगी, तो कभी हारमोनियम बजाते, तो घर में हमारे हारमोनियम और तबला पिताजी ने रखा, तो वही था कि रेडियो में ये कैसे प्रसारण होता है, कैसे इसका क्या होता है तो मालूम नहीं था ये, तो फिर जब मैं शिमला आया पढ़ाई करने, तो धीरे धीरे तब जाके पता लगा कि ये रेडियो का बहुत योगदान है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में रेडियो आया तो लोगों तक ये, जन जन तक ये पहुँचा है, और हर तरह की सूचनाएं, हर तरह का संगीत, हर तरह की विधाएं जो है ना, फिर एक जुड़ाव हो गया।
4: पहली रिकॉर्डिंग और पहला प्रसारण का कुछ अनुभव आपको याद हो आकाशवाणी शिमला का?
5: जी जी, तो जब मेरी नौकरी हो गई शिमला में पढ़ाई करने के बाद, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ा रेडियो की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उस जमाने मुझे लगता है कि 50 रुपये शायद फीस हुआ करती थी ऑडिशन फीस, या कम थी पता नहीं, ऐसा कुछ था, भर दिया गया। तो उस वक्त गज़ल, गीत, भजन, ये तीनों एक ही विधा में गिने जाते थे, अब तो अलग अलग हो गया, गीत भजन अलग हुआ और गज़ल अलग हो गई। तो फॉर्म भर दिया और मेरे को आकाशवाणी ने पास कर दिया, पर उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो गए, तो बड़ा योगदान है रेडियो का, फिर उससे मुझे पहचान भी मिली
4: जी।
5: पहचान मिली धीरे धीरे धीरे धीरे, पर ग्रेजुअली मैं करता रहा उसको, क्लासिकल की तरफ रुझान हुआ, फिर वही सीखा है ना, और बाकी भी चीज़ें सीखी, सितार सीखी, दिलरुबा सीखा थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं सीखा, पर लेकिन मेहनत करने से फल उसका मिल गया, ऐसा हुआ।
4: कमर सिंह जी, कहा जाता है कि संगीत साधना, समर्पण और धैर्य मांगता है।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
4: और आप लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल,
5: जी जी जी,
4: सुगम संगीत,
5: जी जी,
4: इन विधाओं में पारंगत हैं, तो किस तरह से संतुलन आप बनाते थे?
5: हाँ,
4: अलग अलग धाराएं रही हैं ये, तो किस तरह से ये संतुलन बनाया, किस तरह से आप रियाज करते थे?
5: हाँ, ये पारंगत तो खैर इस विधा में कोई हो ही नहीं पाया आज तक, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं वो सब यही कहे कि हम सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट ही बनकर रहना ज्यादा अच्छा है और सीखते रहना चाहिए, जितना सीखें अच्छा है
4: जी।
5: हाँ, टाइम देने की जहाँ बात है, क्योंकि ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, सेमी क्लासिकल हो, कोई भी संगीत जो कनेक्टेड है, क्यों, ताल और सुर दो चीज़ें हैं, और नृत्य भी बीच में ही आ जाता है, कि तीनों जो विधाएं हैं ना, इन तीनों कलाओं का समावेश है, तीनों को हम संगीत बोलते हैं, तो संगीत में ये सारी ही चीज़ें हो जाती है, चाहे फोक हो, सुर तो वही साथ हैं, कुल मिला के वो 12 हो जाते हैं शुद्ध और विकृत करके, तो उसी में ही घूमना है सब, उसी में ही वो है।
4: तो जब आप आकाशवाणी में पहली दफा आए रिकॉर्डिंग के लिए, आपको तब कैसा महसूस हुआ?
5: हाँ, थोड़ा हल्का सा भय तो होता ही है, क्योंकि माइक को जब फेस
4: करता
5: है।
4: कोई ऐसा अनुभव हो जो आप साझा करना चाहें?
5: हाँ हाँ बिल्कुल, जब माइक को फेस करता आदमी थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन फिर दो चार रिकॉर्डिंग जब हो जाती है आदमी की तो फिर वो उसका हौसला अफजाई हो जाती है। और ख़ास करके जितने भी यहाँ रेडियो स्टेशन में स्टाफ आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया। वो भी सीखना ही होता है, क्योंकि
1: जी
5: सीनियर
1: बिल्कुल
5: कलाकार जो है जूनियर को जब सिखाएगा उसके साथ सामंजस्य करेगा तो फिर वो कलाकार सीखता ही है, पनपता ही है,
4: जी
5: ये
4: जी
5: तो इसमें होता ही है।
4: आप काफी लंबे अरसे से आकाशवाणी शिमला से जुड़े रहे हैं, तो संगीत के क्षेत्र में और संस्कृति संरक्षण में क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की, और कलाकारों के लिए क्या योगदान रहा है
5: बिल्कुल, ये
4: आकाशवाणी शिमला
5: बहुत
4: का?
5: अच्छा प्रश्न है। ये आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कि इसके बराबर कोई दूसरा योगदान है नहीं। तो हर कला को विकसित करने में आकाशवाणी का बड़ा रोल रहा है और रह रहा है और आगे भी रहेगा, है ना।
4: आकाशवाणी ने अनगिनत कलाकारों को मंच प्रदान किया।
5: बिल्कुल
4: जी,
5: बिल्कुल
4: आकाशवाणी के इसी मंच से बहुत से कलाकारों ने अपना नाम कमाया है। जी,
5: बिल्कुल, हाँ
4: तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी ने आपको किस तरह से प्रोत्साहन दिया इसमें
5: हाँ
4: आगे बढ़ने के लिए?
5: हाँ आकाशवाणी ने मुझे इतनी पहचान दी, मुझे माइक को फेस करना आया, माइक के सामने कैसे गाना स्टूडियो में, उसके साथ साथ फिर हौसला जब आदमी का खुल जाता है तो वो स्टेज पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। और इसी आकाशवाणी की वजह से जो पहचान मिली है वो देश विदेश, मैं करीब करीब मुझे लगता है 7-8 देशों में जा चुका हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बड़ी देन है आकाशवाणी की
4: जी,
5: कि मैं इतना आगे तक जा पाया।
4: आकाशवाणी से जुड़ा संगीत जीवन का कोई ऐसा यादगार अनुभव जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
5: हाँ, आज तक जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं शिमला रेडियो पे जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है वो इतने प्रसन्न हुए मेरी इस प्रस्तुति से, तो काफ़ी मुझे उनसे प्यार मिला, सबसे ही मिला, और ये था।
4: अच्छा, गायकी के साथ साथ जैसे आप लोकगीत भी गाते हैं
5: हाँ
4: आकाशवाणी के माध्यम से,
5: जी
4: और आपने एक दिलरुबा
5: जी
4: वादन
5: जी जी
4: जिसे हम कहते हैं कि वाद्य,
5: जी जी
4: उसमें भी आप निपुण हैं, तो इसकी क्या विशेषता रही और कहाँ से आपके मन में आया कि इसे भी सीखा जाए?
5: हाँ, ये जो जितने भी ये बोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें एक अलग ही कशिश होती है, चाहे वो सारंगी हो चाहे वायलिन हो। तो और दिलरुबा क्योंकि सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है, और इसराज और दिलरुबा सिर्फ थोड़ा सा ही उसमें आकृति में ज़रा सा कहीं फर्क होता है, वैसे वो एक जैसा ही है और वो दोनों की पूर्ति कर देता है। सारंगी का आभास हो जाता है हल्का सा, तो क्योंकि उसमें फ्रेट्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, सारंगी में पर्दे नहीं होते, वो थोड़ा मुश्किल वो है। निपुणता, जहाँ तक निपुणता, निपुण तो बड़ा मुश्किल है निपुण होना, और कहना भी नहीं चाहिए कोई निपुण हो गया, सब यही कह के गए हैं।
4: शिक्षार्थी बनकर
5: हाँ
4: रहे।
5: हाँ
4: जी बिल्कुल
5: हमेशा
4: बिल्कुल,
5: एक
4: अगर
5: बस,
4: हम
5: हाँ
4: शिक्षार्थी बनकर रहते हैं
5: हाँ
4: तो हम बहुत कुछ सीखते
5: हाँ
4: हैं।
5: हाँ हाँ
4: जी
5: हाँ क्योंकि बस उसकी निपुणता ये है कि वो अच्छा काम करके जब जाता है तो वो जो काम है ना वो अपने आप में निपुण होता है, लेकिन कलाकार कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं निपुण हूँ।
4: लोकगीतों की ओर आपका रुझान कैसे रहा? जैसे आपने कहा कि मेरा उर्दू का वो लहजा रहा
5: जी जी
4: था,
5: जी
4: तो आप कैसे जुड़े
5: हाँ
4: लोकगीतों
5: हाँ
4: की ओर?
5: तो हमारे यहाँ पैक्स थे मिस्टर भारद्वाज जी, तो उनको लगा कि ये आवाज़ जो है हम अगर हम इसको थोड़ा लोक संगीत की तरफ वो डाइवर्ट करें तो कैसा लगेगा, एक तजर्बा किया गया। तो जब मैंने गाया तो वो लोगों को भी पसंद आया, श्रोताओं को पसंद आया, चिट्ठियाँ आने लगी, तो भारद्वाज जी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, आप इसको करिए।
4: जी,
5: हाँ तो फिर मेरा रुझान इस तरफ भी हुआ,
4: लोकगीत की तरफ हुआ।
5: लोकगीत तरफ
4: जी
5: भी हुआ। और अब क्योंकि हमारी संस्कृति है लोकगीत, तो कहीं का भी लोकगीत है वहीं के लोगों को वो गाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक
4: हमारी
5: एक
4: पहचान है, हमारी
5: पहचान
4: धरोहर
5: है,
4: है,
5: हमारी एक इसको क्या कहते हैं कि
4: चांद भी
5: मूल
4: कह
5: पहचान
4: सकते हैं।
5: हमारी
4: जी जी
5: लोकगीत है, क्योंकि उसमें संस्कार गीत आ गए सारे ही आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत के गीत भी हैं,
4: जी
5: प्रकृति के गीत भी हैं,
4: सावन के गीत
5: सावन
4: आपने
5: के,
4: लिखे
5: हाँ हाँ
4: हैं,
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
4: इस मास का गीत हमारे आकाशवाणी से प्रसारित होता था, जैसे कि आपने कंपोज भी किए हैं गीत।
5: जी जी मुझे ये भी लगा कि मुझे थोड़ा कंपोज करना चाहिए। जो जो कंपोज किया वो पसंद आने लगा। फिर मुझे कहा गया कि आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया तो फिर हो गया, फिर वो अप्रूव हो गया।
4: हम आपसे यही तो कह रहे हैं
5: जी जी हाँ जी,
4: लोक संगीत, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, इन अलग अलग धाराओं में आप कैसे बहे।
5: जी जी हाँ जी,
4: आपने मेहनत की, आपने रियाज किया, आपकी रुचि इसमें पैदा हुई, तभी आपने नाम कमाया।
5: जी जी, आकाशवाणी शिमला का ही योगदान था ये।
4: हाँ जी हाँ, हाँ जी,
5: है ना, उसको करने में, क्योंकि अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर वो बात वहीं दब जाती है, खत्म हो जाती है।
4: हाँ। कमल सिंह जी, जैसे कि लोक संगीत हमारी मिट्टी की खुशबू है,
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: आज की युवा पीढ़ी को लोक संगीत और पारंपरिक वाद्यों से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपनी लोक विधाओं को कभी मत छोड़ें। आप सारा म्यूजिक सुनें, चाहे वो पाश्चात्य हो, चाहे वो अपना हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का हो, लेकिन जो हमारी एक पृष्ठभूमि है उससे अलग नहीं होना चाहिए,
4: जी
5: उससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है ना,
4: जी
5: और हमारा वजूद भी वही है।
4: जी
5: बाकी सब करिए आप, वो कोई मनाही नहीं है।
4: जी
5: वेस्टर्न भी अच्छा है, हिंदुस्तानी तो खैर वो है ही अच्छा, है ना,
4: जी
5: उसके बाद बाहर का संगीत भी आप करना चाहें तो करें आप, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करके करें। खाली अगर ड्रम की बीट बहुत ज़्यादा तो कान भी फिर खराब हो जाते हैं ना, तो
4: जी
5: ये हर चीज़ को बैलेंस करके उसको एक कितना क्या होना चाहिए उसी हिसाब से चिंतन करें, उसी हिसाब से उसको रखें।
4: 90 वर्षों की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं आकाशवाणी की।
5: हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव है और ये निरंतर चिरकाल तक चलता रहना चाहिए बराबर।
4: लोक संगीत में, संगीत में क्या आकाशवाणी का योगदान रहा
5: बहुत
4: है।
5: बड़ा योगदान रहा। सारे जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हुए हैं हिमाचल के, उन्होंने एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है रेडियो के ही माध्यम से, आकाशवाणी के ही माध्यम से, और ये पहचान है हमारी,
4: बिल्कुल सही
5: और ये
4: कहा,
5: चलता रहना चाहिए, निरंतर प्रवाह चलता रहना चाहिए।
4: आजकल के युवा कलाकार हैं और संगीत सीखने वाले जो युवा हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप।
5: उनको ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें। हाँ, जल्दी जल्दी में तो फिर ऐसे ही होता है कि गर्म
4: वही
5: गर्म खाएंगे
4: समर्पण
5: तो फिर
4: और
5: जीभ
4: धैर्य
5: जल
4: की
5: जाएगी।
4: आवश्यकता
5: हाँ
4: है।
5: हाँ हाँ धीरे धीरे धैर्य रखें, धीरे
4: जी
5: धीरे टाइम जब आएगा तो अपने आप वो रंग लाएगी चीज।
4: कमर सिंह जी, आज आपने अनुभव, विचार और संगीत यात्रा की सुंदर बातें आज हमारे साथ साझा की। आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
5: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे
6: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक, और रात्रि 9 बजे सुनेगा News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी

0: पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह

0: आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराया।

11 थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

209 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

दोस्तों इस गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।
3: छुपा

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊँ, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा नहीं किया
0: अच्छा। जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध सितार वादक शाहिद परवेज की सितार वादन प्रस्तुति। तबले पर संगत है विजय घाटे की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक शाहिद परवेज़ की सितार वादन प्रस्तुति। तबले पर संगत थी विजय खाटे की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो हमसफर आरती का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब ये दिल पहली बार किसी के लिए बेकरार होता है तो हर वक्त बस उसी का इंतज़ार होता है। नज़रें चारों तरफ बस उसी को ढूंढती हैं।

आपके दीदार के लिए दिल तरसता है, आपके इंतज़ार में दिल तड़पता है। क्या कहें इस दीवाने दिल को जो हमारा होकर भी आपके लिए धड़कता है।

मेरी रात को खूबसूरत बना दो, मुझे अपने दिल की ज़रूरत बना लो, मुलाकात को अब मोहब्बत बना दो।

तेरी यादें, तेरी बातें, बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने हैं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो दोस्त आरती के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।